एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। शक संवद 1948 के वैशाख माह की 26 बीती थी, तदनुसार 16 मई 2026। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना के साथ।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। लीजिए आप सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये भजन। रचना है रविंद्र पठानिया की, संगीत दिया है जगजीत सिंह ने।

लीजिए अब सुनिए शर्मा बंधुओं के स्वर में ये भजन, रचना है पंडित रामानंद शर्मा की और संगीत दिया है शर्मा बंधुओं ने।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के तहत आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज सुबह 6:30 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। भूले बिसरे गीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 6:40 पर। संस्कृत में समाचार होंगे आज सुबह 6:55 पर। कृषि संकेत सुनिएगा सुबह 7:05 पर। और हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह होगा 7 बजे से। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा सुबह 7:10 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहेगी सुनेगा सुबह 7:20 पर।

आज सुबह 7:45 पर सुनिएगा संगीत सरिता, समाचार प्रभात सुनिएगा सुबह 8 बजे से, लोक संगीत सुनिएगा सुबह 8:15 पर, सुबह 8:30 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत, सुबह 9 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे, जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 बजे से, आज सुबह 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत, सुबह 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, सुबह 11 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे, दोपहर समाचार सुनिएगा दोपहर 2:15 पर, दोपहर 2:30 पर समय होगा विविध भारती के कार्यक्रमों का, शाम 5:02 पर सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युवावाणी, शाम 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता। आज शाम 6 बजे से सुनिएगा विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सदाबहार गीत सुनिएगा शाम 6:30 पर, लोकरंग का समय होगा शाम 6:45, हिंदी में समाचार होंगे शाम 7 बजे से, प्रादेशिक समाचार सुनिएगा शाम 7:10 पर, कार्यक्रम किसान वाणी सुनिएगा शाम 7:20 पर। आज रात्रि 8 बजे से सुनिएगा चित्रपट संगीत, रात्रि 8:20 पर समय होगा संगीत सरिता का, समाचार संध्या सुनिएगा आज रात्रि 8:45 पर, रात्रि 9 बजे से सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत, रात्रि 9:30 पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे, हिंदी में समाचार होंगे आज रात्रि 11 बजे से, रात्रि 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ स्वर ए हरिहरण।

भगवान शंकर के शाप के कारण काकभुशुंडी को हजार योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। अंतिम बार वे श्री राम के अनन्य भक्त होने का सुअवसर और गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि वटवृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति और उपासना किया करते थे। काकभुशुंडी, जो अब ब्राह्मण कुलवंशी थे, लोमश ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सगुणोपासना का मूल मंत्र देने की प्रार्थना की, ताकि अयोध्या जाकर स्वयं अपनी आंखों से श्री राम का धाम देखकर अपना जीवन सफल निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरंभ कर दिया। उत्तर में ब्राह्मण ने सगुण मत का निरूपण किया और अपने मत के प्रतिपादन में वे ऋषिवर से वाद विवाद पर उतर आए। इनकी हठधर्मिता से लोमश ऋषि को क्रोध हो आया और इनकी टाएं टाएं सुनकर उन्होंने इनको चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत में सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है आग। गीतकार हैं बेहजद लखनवी और संगीत दिया है राम गांगुली ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। लीजिए अब सुनिए गीता दत्त की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है बाजी। गीत लिखा है शाहिर ने और संगीत दिया है एस डी वर्मन ने।

हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जवानी है। हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घड़ी की जवानी है। और जीने वाले हो।

जी जी आप सुनिए आशा भोसले, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है CID। गीत लिखा है मजरूह ने, संगीत दिया है OP नैयर ने।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां संपूर्य यूरोप देशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक संबंधान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैंड देशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमंत्रिणा टॉम बेरेंडसन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबी नगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमंत्री मोदी डच देशस्य प्रधानमंत्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखांच मिलिष्यति। प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री मोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानाम् उपरि कथमपि अधिभारं आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते 3 रूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणां अपेक्षया 16.5 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सी पी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किमराज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गेंगटोक नगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यत्वदिवससमारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओमप्रकाशमाथुरः, सिक्किमराज्यस्य मुख्यमंत्री प्रेंग सिम तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तरक्षेत्रविकासमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीयमाध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीयचरणे छात्राः विसङ्गतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतो वा अङ्कनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानाम् उत्तराणां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृतवार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य 2-3 दिनाङ्कयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। CSK इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनाङ्कस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन LSG इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनाङ्कानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। स्वीकार कीजिए ऋचा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास की कमी के कारण कभी भी हमारे कदम लड़खड़ा सकते हैं। आत्मविश्वास में वो ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली अड़चनों, कठिनाइयों और परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को साहस प्रदान करती है। वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है, इसलिए किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। आत्मविश्वास में वो शक्ति है जिसके माध्यम से हमें कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं। आत्मविश्वास से हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है और संकल्प शक्ति से हमारी आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है। आत्मविश्वास की शक्ति के कारण ही एक नन्ही चिड़िया कण कण जोड़कर अपना घोंसला बना लेती है। चिड़िया का घोंसला उसके आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, बस जरूरत है अपनी उस खास बात को पहचान कर उसे निखारने की। यदि हम अपनी खासियत पहचान लें और उसी दिशा में सही तरीके से प्रयास करें तो हमारा आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास हमारे अंदर ही समाहित होता है, बस जरूरत है अपने आत्मविश्वास को जगाने की और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की, क्योंकि आत्मविश्वास में कमी आने का सबसे बड़ा कारण नकारात्मक विचार है। हमें अपनी संगत भी उन्हीं लोगों के साथ करनी चाहिए जो हमारा आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाएं। कहा भी जाता है संगत का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपनी उपलब्धियों को भी याद करना चाहिए, क्योंकि खुद की कमियां खोजते रहना भी ठीक नहीं। यदि हमसे जीवन में कोई गलती हुई भी है तो उससे सबक लेकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि समय, अनुभव और ज्ञान के आधार पर ही आत्मविश्वास का विकास होता है।

0: कार्यक्रम सुबह सुबह में बस इतना ही। लीजिए अब सुनिए संदेश।
1: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
2: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
1: News on AIR?
2: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
1: अरे वाह माँ, कमाल है। News on AIR।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि संकेत। विषय है मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य हेतु उपाय। विशेषज्ञ हैं श्री मयंक मेहरा।
5: मैं बताना चाहता हूं कि सबसे जरूरी जो है वो मिट्टी की दशा है, मिट्टी का स्वास्थ्य है। यदि मिट्टी आपकी स्वास्थ्य नहीं है, मिट्टी में जनधारण क्षमता नहीं है, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंट है जो यदि कम होता है, तो आप उससे अधिक उत्पादन नहीं ले सकते हैं, और धीरे धीरे मिट्टी का ह्रास होने लगेगा, मिट्टी का नुकसान होने लगेगा, उत्पादन क्षमता कम होगी, जलधारण क्षमता कम होगी, रोग कीट पतंग बहुत ज़्यादा लगेंगे। जब आप फसल लगाएंगे तो उसमें कीटों का रोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। इसी तारतम्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अभी वर्तमान समय जैसे गर्मी का समय है, आप सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी मिट्टी में गहरी जुताई करें। गहरी जुताई का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है कि मृदा की जलधारण क्षमता आपकी बनी रहती है। जनधारण क्षमता से तारतम है कि मिट्टी में नमी का परसेंट काफ़ी अधिक समय तक सुरक्षित रहेगा। बार बार गर्मियों में चूंकि पानी भी अब कम हो रहा है, और सरकार द्वारा जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है उसके द्वारा पानी बचाव के लिए जल गंगा मिशन और तमाम प्रकार के जल को बचाव के लिए बहुत अधिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जलधारण क्षमता में वृद्धि होना चाहिए। दूसरी चीज़, मिट्टी की बनावट के लिए जो हानिकारक जो आपके कीट पतंग हैं उनसे आपको सुरक्षित होता है। दूसरी चीज़, मिट्टी की उर्वरा क्षमता जो है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि यदि उर्वरा क्षमता में वृद्धि नहीं होगी तो निश्चित रूप से आपकी फसल का उत्पादन जो है वो कम होगा। तो आप कोशिश करें कि हर 3 साल में आप एक बार गहरी जुताई करें, और बार बार गहरी जुताई ना करें। बार बार गहरी जुताई करने से जलधारण क्षमता और मृदा की उर्वरा क्षमता कम होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि हर 3 से 4 साल में एक बार आप गहरी जुताई करें, जिससे कि मिट्टी की उल्टा पलटी हो जाती है, ऊपर की जो लेयर रहती है वो नीचे चली जाती है और वो नीचे की जो लेयर रहती है वो ऊपर आ जाती है। इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि उत्पादन क्षमता निश्चित रूप से उसकी बढ़ती है और जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। वर्तमान समय आपका ऐसा है कि आप मिट्टी सुधार के लिए मिट्टी की जाँच कराएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिट्टी की जांच कराना, क्योंकि बिना मिट्टी की जांच कराए आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि किस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, और जिस पोषक तत्व की जिस मिट्टी में कमी रहती है यदि हम उसकी फली फूर्ति नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से फसल का उत्पादन आपका कम होता है। उसके लिए आप बेहतर ये है कि आप 4 से 5 जगह से मृदा का सैंपल लें। मृदा की सैंपल लेने के लिए आप लगभग 15 सेंटीमीटर का वी आकार साइज का एक खनोसते हुए मिट्टी आप लें उसको, और कुछ चीज़ों का ये ध्यान आपको रखना है कि जैसे जहां आपने बीज और केमिकल मिक्स किया है उस जगह का सैंपल आपको नहीं लेना है, जहां पे आपको पानी भर

0: है उस जगह का सैंपल आपको नहीं लेना है, जहां पे नदी है तालाब है उससे लगभग 5 से 10 मीटर दूर से आपको सैंपल लेना है। यदि आपका कहीं टीला है घाट है उस जगह का आपको सैंपल नहीं लेना है। कुछ चीज़ों को बहुत विशेष ध्यान रखना है, जहां आपका गोबर डला हुआ है, जहां आपके कंपोस्ट डली हुई है, या जिस जगह का जिस पानी का प्रयोग आप केमिकल दवा स्प्रे के लिए गए तो उस जगह का सैंपल नहीं लेना है। ये तमाम चीज़ों का आपको विशेष ध्यान लेना है। 4 से 5 सैंपल आपको लेना है और 4 से 5 सैंपल लेने के बाद आप उसको एक जगह इकट्ठा कर लें, फिर एक सैंपल हटाएं आप, फिर 3 सैंपल बचेंगे, फिर एक को हटाएं 2 बचेंगे। इस प्रकार से एक सैंपल आपके पास मिट्टी का उपलब्ध हो जाएगा। और इकट्ठा मिक्स करने का मतलब यह है कि चारों पांचों कोहनों से आपका जो भी मिट्टी है जिस पोषक तत्व की कमी है उसको आपको पूरी मिट्टी का सैंपल वो आ जाएगा। इस तरीके से आप लगभग 300 से 400 ग्राम मिट्टी, बारीक ढेले नहीं लेना है आपको, बारीक पिसी हुई मिट्टी का सैंपल आप लें। फिर उसमें सैंपल दो तरीके से हो, एक यदि आप चाहें तो प्राथमिक पोषक तत्व जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होते हैं उसकी आप कैलकुलेशन मात्रा आप देख पा रहे हैं, और इसके अलावा आप सूक्ष्म पोषक तत्व 17 पोषक तत्व जो हैं, इन सभी चीज़ों के लिए भी मिट्टी की स्वास्थ्य और दशा सैंपल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कि जैसे यदि जिंक की कमी है आपके फसल में, नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है, जिस पोषक तत्व की कमी आपके खेत में है सैंपलिंग से यह पता चल जाएगा, और उस पोषक तत्व का प्रयोग आप अपनी मिट्टी में आप अपनी फसल में निश्चित रूप से कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत, यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव। नीदरलैंड्स भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से हुए कई समझौते। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर गैंगटोक पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भूशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया स्वागत। बोले, ब्रिटेन से वापस लाएंगे मां बागे देवी की प्रतिमा। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन, नॉर्वे, इटली भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में 5 देशों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। कल श्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी है।
1: और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंगटोक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1975 में राजशाही

0: खत्म होकर यह भारत का 22वां राज्य बना था। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भोजशाला को मां वाग देवी की आराधना स्थली माना है। डॉ. यादव ने कहा है कि अब श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में रखी मां वाग देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे।
1: इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वाग देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ। स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वाग देवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाएं। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करने और ग्रामीणों को मुफ्त पट्टे देने का अभियान चलाने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने गाँव में स्कूल, खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं देकर शहरों की ओर पलायन रोकने पर जोर दिया। देवास के टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े इस एकल सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता करेंगे। आयोग घटना से जुड़े 5 बिंदुओं की गहन जांच करेगा और 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा उद्यमियों अपर्णा और दिनेश से मुलाकात की। ये युवा उद्यमी रूडा नोट्स के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने कागज के उत्पाद गुणवत्ता, कार्यक्षमता और टिकाऊपन में बेहतरीन हैं। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अच्छी स्टेशनरी हमेशा से उनके दिल के करीब रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल शाम भोपाल के रविन्द्र भवन में नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। गुड़ी पड़वा से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान के तहत कुएं, बावड़ियां, तालाबों को फिर से उपयोगी बनाने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को समर्थ नर्मदा अलंकरण से सम्मानित किया। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट UG परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच CBI कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। CBSE ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। पहले चरण में 19 से 22 मई के बीच ₹700 प्रति विषय शुल्क देकर उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी जा सकती है। दूसरे चरण में 26 से 29 मई के बीच गलती के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। हर चरण में सिर्फ 1 आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को इसके लिए 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सब्जी में 54,000, मसालों में 56,000 और फलों में 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, आधुनिक तकनीक की मदद भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं 98% से अधिक घरों का निर्माण शुरू हो गया है। 9 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं और लोगों को सौंपे जा चुके हैं। मंडला जिले के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कल केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने इस उत्सव का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि आयोजन जनजातीय संस्कृति परंपराओं को जीवित रखने का बड़ा मंच है। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1 करोड़ 1 लाख

रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21 लाख का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5 लाख के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। न्याय, सुशासन, कला, शौर्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश विदेश के लोग

आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव-गांव जल संरक्षण के काम हो रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर ने पद्मश्री लोक कलाकार रमेश परमार और शांति परमार की कार्यशाला का भ्रमण किया। धार में 3 दिवसीय 11वें पद्मश्री फड़के संगीत समारोह का शुभारंभ कल शाम विक्रम ज्ञान मंदिर लालबाग परिसर में हुआ। पन्ना में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर के वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। खंडवा में शनिचरिया महोत्सव पर हजारों श्रद्धालु माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगर मालवा के सुसनेर में युवा संगम रोजगार मेले में 33 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ। अशोकनगर में संपर्क अभियान के तहत बिजली संबंधी सेवाओं के लिए घर घर शिविर लगाए जा रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने 72 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत में सुनिए फिल्म बाजीराव मस्तानी से ये गीत। आवाज है शिरा घोषाल, गणेश और अजीज नाजा की। गीत लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने, संगीत दिया है शैल प्रीतिश ने। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रणीता, एकांश, अर्जुन ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि ने। इसी गीत को पसंद किया है शीतल रेडियो श्रोता संघ जिला खरगोन से डॉक्टर तेलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, मास्टर समर, राज आर्यन, बेबी आरोही, एकशिका, अंजलि, श्वेता ने। और इसी गीत को सुनना चाहा है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमान और उनके सभी परिवारजनों ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

अगली फरमाइश हमें भेजी है बोर खेड़ा पित्रा मल जिला उज्जैन से विनोद मूरत नेहा जैन दीपक मयंक चेतन नाहटा दीक्षा और कुश मूरत ने बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक नामदेव समर्थ नामदेव और शौर्य ने इसी गीत को पसंद किया है। ग्राम रजोनी महोबा बुंदेलखंड यूपी से उदय भान पाल जय हिंद पाल दीक्षा पाल प्रतीक्षा पाल बिमलेश पाल दिव्यांश बघेल और उनके परिवारजनों ने मित्रनगर बीड़ शहर महाराष्ट्र से विकास वंसोड़े रेखा अदिति और वैभव शिंदे ने इसी गीत को पसंद किया है। खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे ने पटेल नगर से इस गीत को

सुना चाहा है रमेश कुमार जरोरिया, गीता रानी जरोरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म चलते चलते से ये गीत। आवाज़ है अभिजीत और अलका याग्निक की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
4: श्रोताओं एक सूचना सुनिए। सहोद्रा राय शासकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय सागर के आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक कक्षा 10वीं एवं 12वीं के उत्तीर्ण विद्यार्थी महाविद्यालय से संपर्क करें या MP ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। ये सूचना सहोद्रा राय शासकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज द्वारा प्राप्त है। सूचना समाप्त हुई।
5: आने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम मन चाहे गीत में। अगली फरमाइश हमें भेजी है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा ने। बिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा ने। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने। MLV रोड ग्वालियर से इस गीत को पसंद किया है सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, SK पप्पी खुराना ने। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फिल्म नदिया के पारसी गीत आवाज़ हेमलता और जसपाल सिंह की। संगीतकार और गीतकार हैं रविंद्र जैन।

अगली फरमाइश हमें भेजी है गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा ने, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, दुग्गू भाबिका सिक्का ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म कहूँ ना प्यार से ये गीत, आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा है इब्राहिम अश्क ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहेगी तब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। संगीत सरिता में सुनिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में ये गज़ल कलाम है इब्राहिम अश्क का। संगीत दिया है भूपेंद्र सिंह ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम संगीत सरिता में। लीजिए अब सुनिए चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल कलाम है बशीर बद्र का, और संगीत दिया है चंदन दास ने।

इसी के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की

0: प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदार और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
4: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2 लाख बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग एक साल के अंतराल में 30 लाख मकान

0: महाराष्ट्र को मिले इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा LPG संकट, UAE से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा UAE। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, NEET UG की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, CNG के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई

0: पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से चार दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 102.6 MHz पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में सुनिए राधा खरे की आवाज में ये लोकगीत।

0: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
1: श्रोताओं एक सूचना सुनिए। सहोद्रा राय शासकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय सागर के आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक कक्षा 10वीं एवं 12वीं के उत्तीर्ण विद्यार्थी महाविद्यालय से संपर्क करें या MP ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। ये सूचना सहोद्रा राय शासकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज द्वारा प्राप्त है। सूचना समाप्त हुई।
2: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक बार फिर आपका स्वागत है बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत में। लीजिए आप सुनिए बद्री प्रसाद परदेसी के स्वर में ये लोकगीत।

0: लीजिए आप सुनिए रामकुमार प्रजापति के स्वर में ये लोकगीत।
1: हमेश पृथुमई गणेश और शारदा से उपमा बिटिया

0: कभी भजन लाल सौंपी बिटिया, बिटिया है धन्य अनुपम अनन्य प्रतिभा।
1: इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गीत, फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

0: श्रोताओं एक सूचना सुनिए। सहोद्रा राय शासकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय सागर के आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक कक्षा 10वीं एवं 12वीं के उत्तीर्ण विद्यार्थी महाविद्यालय से संपर्क करें या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। ये सूचना सहोद्रा राय शासकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज द्वारा प्राप्त है। सूचना समाप्त हुई।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। लीजिए अब सुनिए यशुदास की आवाज में गीत, फिल्म का नाम है चित्तचोर। गीतकार और संगीतकार है रविंद्र जैन।

लीजिए, आप सुनिए सुखविंदर सिंह और सलीम मर्चेंट की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है जग दे इंडिया। गीतकार हैं जयदीप साहनी और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

आप सुन रहे हैं चित्रपथ संगीत। लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में गीत। फिल्म का नाम है जब भी मेट। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत दिया है प्रीतम ने।

इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: विविध भारती से कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक, और यह है चित्रलोक का अगला गाना।

0: आता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

आपने सुना। वरुण ग्रोवर की बोलती अनु मलिक की तरसी, और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना अरिजीत सिंह की आवाज। फिल्म का नाम है छिछोरी। अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम।

और ये थी आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और चलते चलते आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि विविध भारती सृजन भारती का आयोजन कर रहा है और इस सृजन भारती में क्या होने वाला है। अगर आप मुंबई में हैं तो 21 तारीख की शाम 6:30 बजे जरूर आइए। सारा ब्यौरा इस प्रोमो में है। जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं।

0: और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया। hey!

दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का। लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल गुत्थी में

बेटी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और उसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक

नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया जिसने बनाई फिल्म मसान, और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की

तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: फिर है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आकाशवाणी है, 10 बजने जा रहे हैं। आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों सूरज मानो आग उगल रहा है। जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दोपहर होते होते सड़कें सुनसान नजर आने लगती हैं। गर्म हवाओं और लू से बचने के लिए लोग चेहरों को सूती कपड़ों से ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि पानी की व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खासकर जिले के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। प्रशासन क्राउलर बोरिंग मशीनों की मदद से नए पेयजल स्रोत तैयार कर रहा है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूरी हो चुकी 5 नल जल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। दूसरी ओर जिले में गेहूं खरीदी का काम भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। प्रशासन किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के साथ साथ मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी कर रहा है। इस साल रबी सीजन में गेहूं बेचने के लिए जिले से 4738 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिले के 5 प्रमुख उपार्जन केंद्रों पर अब तक 1346 किसानों से 60,727 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। भुगतान की करीब 90% राशि यानी 14,42,00,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में भी पहुंच चुके हैं। बड़वानी शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत खास अभियान शुरू किया है। नगर पालिका की IEC टीम घर घर पहुंचकर लोगों से स्वच्छता को लेकर फीडबैक ले रही है। इसी बीच जिले में लाडली उत्सव की खुशियां भी देखने को मिली। जिले के 1815 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में लाडली बेटियों और उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। वहीं शिशु मृत्यु दर को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्टर ज्योति सिंह ने मामलों की गहन समीक्षा करते हुए मृत शिशुओं के परिजनों से सीधे बातचीत की। उन्होंने इलाज के दौरान आई परेशानियों, स्वास्थ्य केंद्रों पर मिली सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। न्याय व्यवस्था को आसान और त्वरित बनाने की दिशा में भी जिले में बड़ा कदम देखने को मिला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में लंबे 384 मामलों में से 294 प्रकरणों का समाधान हुआ और करीब 4,82,00,000 रुपए से अधिक की राशि के अवार्ड पारित किए गए, जिससे 588 लोगों को राहत मिली। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला मुख्यालय स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 326 युवाओं ने पंजीयन कराया। विभिन्न कंपनियों ने 68 युवाओं का चयन किया। जिले के कलेक्टर ने जलगंगा संवर्धन अभियान और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फॉर्म पॉन्ड, अमृत सरोवर, डगविल और वाटरशेड डेवलपमेंट के कामों की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर 3 सब इंजीनियर्स का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान भी शुरू हो गया है। आयुष विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में रोज सुबह ऑनलाइन और ऑफलाइन योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के 27 केंद्रों पर लोग योग के जरिए खुद को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निवाली में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कृत्रिम हाथ पैर शिविर लगाया गया। शिविर में 28 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 13 लोगों को मौके पर कृत्रिम हाथ और पैर उपलब्ध कराए गए। जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल का दौरा भी चर्चा में रहा। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खास बात यह रही कि उन्होंने अधिकारियों के साथ कारों के लंबे काफिले की बजाय बस से यात्रा की। ग्राम ओझर में आयोजित रात्रि चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इन सब के बीच जिले की बेटी स्नेहा दावदी ने बड़वानी का नाम देशभर में रोशन कर दिया है। स्नेहा जिले की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है, जिनका चयन भारत के अंडर-18 टीम में हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर नई उपलब्धि हासिल की। अब वे जापान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। मकान सूचीकरण और गणना का काम तेजी से चल रहा है। कई प्रखंडकों और पर्यवेक्षकों ने समय सीमा में 100% लक्ष्य पूरा कर मिसाल पेश की है, जिसके लिए शासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। बड़वानी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: बड़वानी जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था शिवपाल सिंह सिसोदिया का और वाचन किया था दीपा सिंह ने।

चिट्ठी से लोकगीत। हाँ भैया हरो, आपकी चिट्ठियों को मनपसंद कार्यक्रम लेके हम आ गए हैं। हालांकि आजकल व्हाट्सएप को जमाना है, संदेशों के माध्यम से भी आप औरें अपनी अपनी फरमाइशें लिख के भेजत हो, सो हम बेबी शामिल कर लेते हैं और अपनी पसंद के, आपकी पसंद के लोकगीत सुनवाउते हैं आपको। सो जो लोकगीत सुनबे सुनावे को क्रम ऐसा ही बराबर जारी रखें अपन, मनो पहलो लोकगीत सुनबे से पहले हमारी राम राम स्वीकार करो आप और हम कर रहे आप सभीजनों को खूब ही खूब स्वागत। चलो अब ले रहे अपन जा पहली फरमाइश, जा हमें मिली है देवी सिंह राजपूत के गाय भाई लोकगीत के लाने। लिखवे बारे हैं मंथन रेडियो श्रोता संघ अमानवी से गुड्डू तिवारी, पूजा तिवारी, नारायण प्रसाद तिवारी, योगिता तिवारी, वैष्णवी तिवारी के संगे तिवारी परिवार के सभी सदस्य। जो लोकगीत सुनबेखो संदेशो हम तक पहुँचाओ है जितेंद्र कुमार आठिया, राज आठिया, यश आठिया, नेहा आठिया, दामिनी आठिया, सिया आठिया, आनंदी प्रजापति, जुगल साहू, कोमल प्रजापति, रामबाबू रजक, बंटू रजक, जे सभी जने कहाए भैयारो ग्राम पोस्ट गढ़ोला जागीर तहसील खुरई सागर की। तो चलो अपन सब सुन रहे देवी सिंह राजपूत को गाओ भाव जो लोकगीत।

चलो भैया हरो, अब जो अगलो लोकगीत है गंगा राम लड़िया और साथियों को गाओ भाव। एक हों सुनबे किलाने फरमाइश आई है गौर झामर जिला सागर से कुंदर लाल चौरसिया निर्मोही, अंबिका प्रसाद चौरसिया, विवेक कुमार चौरसिया, वीरेंद्र कुमार चौरसिया, देवव्रत चौरसिया, कार्तिक चौरसिया, आराध्य चौरसिया, नैवेद्य चौरसिया, मनोज चौरसिया, मानस चौरसिया और इनके सवई मित्रगण। और जो लोग गीत सुनबो चाह रहे हैं चंद्र किशोर चक्रवर्ती, बहादुर चक्रवर्ती, महाराज चक्रवर्ती, बड़े भैया हरे राम, बड़े भैया दशरथ, श्रीमती शीला भाभी, जसोदा भाभी, भगवती भाभी, ममता देवी, रामकली, चुटकी, बबली, काजल, करण और सवई रामटोरिया निवासी। सो इन सबकी फरमाइश पे अपन सब सुन रहे हैं कार्यक्रम को जो दूसरों लोकगीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अब बारी है भैया हरो तीसरो लोकगीत शामिल करवे की और फरमाइशकर्ताओं के नाम शामिल करवे की। सो योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, कृष्णा भारतीय और गोपाल भारतीय की फरमाइश आई है गैरतगंज जिला रायसेन से और तहसील रहटी जिला सीहोर से लिख रहे हैं अमर सिंह भारतीय, कोसाबाई भारतीय, महेंद्र भारतीय, तरु भारतीय और श्रीमती ललिता बाई भारतीय। और छत्री तलाव अमरावती से लिख रही हैं साधना रानी गुप्ता, कविता गुप्ता, नेहा गुप्ता और कमलेश गुप्ता। तो चलो अपन सब सुन रहे जो कार्यक्रम को अगलो लोकगीत।

0: पसी
1: बिजनैया डुलाओ गोरी तो पसीना में भींज गई। भैया हरो ए लोकगीत के बाद एक और फरमाइश हमें मिली है शास्त्री वार्ड सागर से उमेश सेन अजय यादव पीयूष मिश्रा पवन सोनी शुभम पटेल उत्तम मिश्रा राजा दुबे रोनित राय दीपा नामदेव सोनाली नामदेव नीलेश नामदेव सोमू नामदेव सागर नामदेव प्रियांश दुबे अर्जुन दुबे रोनित आर्य सजल जैन राज यादव प्रवीण जैन आनंद नामदेव सोमेश मिश्रा अवि यादव पूजा दुबे और सागर जैन की। और जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ सद्भावना नगर रहली सागर से पंडित ऋषिकेश तिवारी निरंजन तिवारी प्रियंका पूजा विष्णु प्रसाद मंजू दयाशंकर तिवारी मोनू मनीष आर के तिवारी और सवई तिवारी परिवार भी जॉय लोगी सुनबो चाह रहे हैं। तो चलो अपन सब सुन रहे चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोकगीत।

चलो भैया हरो, तो फरमाइशों के लोकगीत सुनबे को सिलसिलो हम इतई कर रहे समाप्त। ऐसे ही फरमाइशें आप लिख के भेजत रहो, बढ़िया बढ़िया लोकगीत हम आपको सुनवाउत रहें। इन्हीं बातों के संगे हमें देव अनुमति। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे चिट्ठी से लोकगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी सुनबेबारी हमारी सबई सखियों को आपकी अपनी बहन निधि मिश्रा की राम राम। बहनों गर्मी तो खूब ही पड़ी है, देख रहे अपन की सवेरे के 8-9 बजे से ही इतो तेज घाम लगन लगत है कि कोनो काम करवे को या कहूँ आवे जावे को मन ही सुनई करत। ऐसो लगत कि सब काम घर के सवेरे जल्दी ठंडे में निपटा लो और बस घर ही रहो आराम करो। लेकिन अब का करो जाए बहनों, ऐसो तो संभव हो नहीं सकत है। कौन सो काम रुकत है आप ही बताओ। घर गृहस्थी अपनी पटरी पर चलत रहे, एक लाने हमारी

बहनों को, सभी भैयाहरों को घर के बाहर के कामों में घर से निकलवो जरूरी हो ही जात है। सो सभी काम आप अपने बिल्कुल अपने समय पे करत रहो। बस तन खावे पीवे को ध्यान जरूर रखने अपन को, जिमें स्वास्थ्य संबंधी कोनो दिक्कत परेशानी नहीं हो पाए। और होत का है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में खाना खावे को मन ज़्यादा नहीं होते, मनो स्वस्थ रह भी किलाने, सब काम अपन समय पे करत रहें, एक ही लाने खावे पीवे को ध्यान रखवो जरूरी है। सो ठंडे पेय पदार्थ हैं जैसे आम को पनो हैं, बेल को शरबत है, कलिंदो है माने तरबूज है, चिमरी है, इनको सेवन अपन गर्मी में करत रहें तो स्वस्थ बनी रहें और शरीर की जो गर्मी है वह शांत रहे और नमी बनी रहे, पानी की कमी नहीं हो पाए। सो खूब पानी भी पीने अपन को। अब का है बहनों के ब्याह काज खूब पड़े, अब कोनो दिना बाकी नहीं रहे, कोनो दिन ऐसो न जय है कि हमें कहूँ ब्याह बरातों में नहीं जाने, रोज ऐसो जाने पर रहो। अब कोनो दिना तो ऐसा हो जाते हैं कि दो दो तीन तीन जगह के न्योते अपन को आ जाते और व्यवहार बने रहें, संबंध अपने अच्छे बने रहें, जा सोच के जावो भी जरूरी हो जाते और अपन जात भी हैं, कैसे सबसे मिलवो जुलवो भी हो जाते, तनक हंसी मजाक भी हो जाते और रोज रोज एक ही काम से, एक सी दिनचर्या से जो उबाऊपन सो लगन लगत है उसे भी तनक बदलाव से मिलत है, जी में मन खुश हो जाते है। मनो इतने भी अपन जई के हैं कि जाने जरूर है अपन को ब्याह शादियों में, मनो खावे पीवे के संगे और भी छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपन को ध्यान रखने। जैसे होत का है कि इतनी गर्मी में खूब भारी साड़ी अपन ने पहन ली, खूब बड़े बड़े हार हैं, झुमका हैं, इन सब जेवरों को उपयोग करने के बजाय छोटे छोटे हल्के पतरे कान के पहन सकते हैं अपन। ऐसे ही गले में भी हल्की चैन पहन सकते हैं, छोटे छोटे हार हैं, हल्की साड़ी है जिमें ज़्यादा वर्क नहीं है, मन कम वजन की है, ऐसी चीज़ों को उपयोग अपन कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा देर यदि पहनने भी पड़ रही है तो वो कोनो परेशानी नहीं हुई है अपन को। नहीं तो कहा है कि गर्मी की शादियों में खूब अपन तैयार हो गए, खूब सज गए, खूब संवर गए और उतने पसीना में सब एक सो हो गए और भारी साड़ी में, भारी जेवर में घबराहट सी होते और गर्मी लगत है सो अलग। सो इन बातों को ध्यान अपन को रखने कहा, कैसे अपन को शादी ब्याह को भी पूरो आनंद उठाने हैं, है ना, सज धज के गाने बजाने भी है। तो चलो अब जब अपन गावे बजावे की बात कर रहे तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन अभी अपन सुन रहे थे शकुंतला राजपूत को।

0: चलो बहनों, ये लोक गीत के बाद अब अपन बात करें 18 मई यानी एड्स टीकाकरण दिवस की। बहनों कहते हैं कि यदि कोनो समस्या है तो उसको समाधान भी जरूर है, और जा बात स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी लागू होते हैं। और एड्स के बारे में तो अपन सभी जानते ही हैं कि कितनी घातक बीमारी है, और एड्स के बारे में 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाओ जाते हैं, जा बात भी अपन जानते हैं, जे में जानकारी दी जाते है कि एड्स कैसे हो जाते हैं, कैसे बचाव करो जा सकत है, और कौन कौन सावधानियाँ रखने आती हैं, इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाते है 1 दिसंबर को, जे में जागरूक हो सकें अपन सब जने। मनो 18 मई को दिन ऐसा है जब एड्स जैसी बीमारी टीका के माध्यम से ख़त्म करवे के लाने लोगों को जागरूक करो जाते है। और बता दें आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के 1997 में एक भाषण के माध्यम से समाज में जागरूकता ले आवे की प्रेरणा मिली हती, जब इसे 18 मई को दिन एड्स के टीकाकरण के लाने घोषित कर दो और एक घातक बीमारी से लोगों को बचावे के प्रयास करे गए। तो बेनो जातो भाई बात एड्स टीकाकरण दिवस की, जौन 18 मई को अपन मनाऊ थे, और अब अपन बात कर रहे हैं फिर से गर्मी के मौसम की। वैसे भी अब हमने कही कि खूब गर्मी पड़ रही है, अब दिन प्रतिदिन लू लपट को खतरा बढ़त जा रहा है। जानकारों की सलाह यही है कि घर से बाहर नहीं निकलो, गमछा तौलिया लेके निकलो, मुँह कान नाक अच्छे से बांध के निकलो, जेमें लू से बचाव हो सके। हालांकि बहुत विस्तृत विषय है बहनों, जो इसे लू के लक्षण और उपचार विषय पर हम एक बातचीत लेके आए हैं, जिनमें डॉक्टर अनुराग जैन से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। चलो अपन सब सुने जब बातचीत।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनुराग जैन हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग से, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
2: धन्यवाद दीपक जी।
1: श्रोताओं, आज जिस समस्या को लेकर के पूरे विश्व में चिंता बनी हुई है, गर्मी को लेकर के, गर्मी की समस्या ये राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखी जा रही है। वैश्विक तापन का जो असर है वो हर जगह देखने को मिल रहा है, और इसके साथ जो एक चिंता बढ़ गई है वो है

0: उष्माघात की या तापघात की, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं हीट स्ट्रोक, और सामान्य भाषा में उसे बोलते हैं लू लगना। तो आज इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये समस्या क्या है, इससे कैसे निपट सकते हैं, इसके लिए बचाव क्या है और क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चर्चा की और आपसे ये जानना चाहेंगे, लू लगने की स्थिति, तापघात, ये समस्या किस अवस्था को हम कहते हैं?
1: देखिए दीपक जी, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जो आम भाषा में लू लगना जिसको बोलते हैं या हीट स्ट्रोक, ये एक प्रकार का शरीर जब ज्यादा तापमान में बहुत देर तक रहता है तो जो हमारे शरीर की एक तापमान नियंत्रण प्रणाली होती है, जो मल्टीपल मैकेनिज्म्स होती हैं, बहुत सारे प्रकार की प्रणाली होती है जिससे कि हम जो हमारा शरीर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास अपना कोर टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। बट अगर किसी भी कारणवश ऐसा हो जाए कि ये टेम्परेचर ज्यादा होने लगे, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने लगे, 40-42 डिग्री सेल्सियस तक जाने लगे, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर है अपने आप को ठंडा नहीं रख पाता है और मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मस्तिष्क हो गया, हमारी मांसपेशियां हो गई, किडनीज हो गया, ये सब डैमेज होने लगते हैं। और अगर इसको सही समय रहते ट्रीट नहीं किया गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो इसमें पेशेंट कोमा में या उसका मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए आज हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हीट स्ट्रोक क्या है और इसका हम कैसे बचाव कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि हमारे शरीर का जो तापमान, औसत तापमान जो होता है, औसत तापमान से ज्यादा तापमान जो हो जाता है तो हमारे शरीर के कई ऑर्गन्स होते हैं सामान्य तरीके से काम नहीं करते हैं और ऐसी अवस्था में हम कोमा में भी जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि मुख्य कारण क्या है हीट स्ट्रोक का, हीट स्ट्रोक या तापघात की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है और शरीर में उसके लक्षण किस तरीके से आते हैं?
1: देखिए, तापघात यूजली दो प्रकार से हो सकता है, या तो बहुत हैवी टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं आज की भाषा में हीट वेव चलना, लू चलना, एक लू लगना होता है, एक होता है लू चलना। अगर आप बहुत देर तक अपने शरीर को एक हैवी टेम्परेचर में एक्सपोज करके रखते हैं तो हैवी स्वेटिंग के कारण, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद आपका शरीर एक लिमिट के बाद स्वेट को, या इसको बोलते पसीने को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, और जो पसीना को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है तब की स्थिति में शरीर को ठंडा रखने की दूसरी कोई प्रणाली बची नहीं है और इसके कारण आपको तापघात होता है। और दूसरा प्रकार होता है कि अगर आप एक हैवी टेम्परेचर है, आसपास वातावरण गर्म है और आप कोई हैवी वर्कआउट कर लेते हैं, जैसे मजदूर वर्ग है, हमारे किसान दोस्त हैं, हमारे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जब वो वर्कआउट करते हैं तो अंदर ही उनकी जो हीट है, जो मसल्स हैं, वो काम करने से उनकी ऊष्मा उत्पन्न होती है। चूंकि बाहर का टेम्परेचर गर्म होता है और अंदर भी गर्म होता है, तो जो ऊष्मा का उत्सर्जन है, जो हीट का डिसिपेशन है, वो अगर प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और फर्दर हीट स्ट्रोक की जैसी कंडीशन बन जाती है।
0: डॉक्टर साहब, आगे हम चर्चा में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके शरीर में यदि आपको लू लग गया है या इसकी आशंका आपको कहीं से प्रतीत होती है कि शायद हमें लू लग गया है, तो उसके लक्षण यदि व्यक्ति खुद समझना चाहे हॉस्पिटल में जाने से पहले, ताकि सही समय पे अपनी जो समस्या है उसका इलाज ले सके, तो वो क्या क्या समस्याएं हैं जिसको जान करके, देख करके, समझ करके व्यक्ति अंदाजा लगा ले कि कहीं न कहीं वो लू का शिकार हो गया है?
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको हीट स्ट्रोक के लक्षण खुद पता रहे, या आपके अगर पास में आपका कोई मित्र है या आपके कोई परिवार वाले हैं जिनमें हीट स्ट्रोक होने की संभावना आपको लग रही है, तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको आप पहचान कर ट्रीटमेंट भी आप खुद कर सकते हैं प्रारंभिक तौर पर। बाकी जो एडवांस ट्रीटमेंट होता है, अगर प्रारंभिक ट्रीटमेंट उसका काम नहीं करता है तो फिर अपने को उसको मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जैसे कि सिर में तीव्र दर्द होना, थ्रॉबिंग हेडेक जिसको बोलते हैं, बहुत तेजी से एक दर्द होता है सिर में, आपकी जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, वो आपको काफी सूखी हुई प्रतीत होती है। जैसे यूजुअली क्या होना चाहिए कि जब आप हैवी टेम्परेचर में है, हाई टेम्परेचर में है, तो आपको पसीना आना चाहिए, आपकी चमड़ी गीली रहनी चाहिए, मॉइस्ट रहनी चाहिए, बट आपकी चमड़ी सूखी रहती है और जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो एक उसमें एक लालिमा उत्पन्न होने लगती है जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फ्लशिंग बोलते हैं। तो ड्राई एंड हॉट स्किन जो होती है उससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके मित्र को या आपको हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है, अगर आपके पास थर्मामीटर होता है, किसी के पास थर्मामीटर हो सकता है, तो अपन उसको माप भी सकते हैं, जो कि 104 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर जा सकता है और अमूमन जाता ही है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या जिसको बोलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपके बॉडी का टेम्परेचर चला जाता है। इसमें मेन जो लक्षण होते हैं वो दिमागी लक्षण भी होते हैं, मरीज कन्फ्यूजन की स्थिति में चला जाता है, उसको एक घबराहट, एक झुंझलाहट, एक चिड़चिड़ापन आने लगता है, वो चक्कर का भी बोल सकता है आपसे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, उसको बोलने में दिक्कत आ सकती है, जवान का लड़खड़ाना जिसको हम बोलते

0: हैं, जैसे कि एक पैरालिसिस में भी हो सकता है, इसीलिए हमने इसको हीट स्ट्रोक बोला है, क्योंकि वहां पे जो स्ट्रोक होता है उसका कारण दूसरा होता है, बट उसमें जवान लड़खड़ा सकते हैं आपकी, और यहां पे भी सेम हो रहा है कि आपके जवान लड़खड़ा रहे, बोलने में आपको दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मरीज सुसुप्तावस्था में बेहोशी की तरफ बढ़ने लगता है, और इवन उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये कोमा भी डेवलप कर सकता है आपको। इसमें अभी जो बहुत ज्यादा दिक्कत के साथ मरीज आ रहे हैं वो है पेट संबंधी दिक्कतें, जैसे आपका कुछ भी नहीं है, आप दो घंटे पहले तक एकदम ठीक थे, आपको एकदम से लगने लगा जी में चला रहा है आपका, आपको पेट में ऐठन वाला दर्द होने लगा, आपको दस्त भी लग रहे हैं, या आपके अदर जो मसल्स हैं वो भी पेन उनको हो रहा है, आपकी श्वास तेज चल सकती है, आपके हृदय गति आपको बढ़ी हुई फील हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं कि जिनको हम अर्ली आइडेंटिफाई करके प्रारंभिक तौर पर खुद की चिकित्सा या अपने साथ वाले की चिकित्सा प्रारंभ कर सकते हैं, ताकि ये बीमारी एडवांस ना हो पाए।
1: डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होने के साथ साथ डायरिया की समस्या भी हो सकती है, दस्त लगने की समस्या भी इसमें हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: जी डॉक्टर साहब,
0: जिससे कि आपका डिहाइड्रेशन और बढ़ जाता है,
1: डायरिया के कारण शरीर से पानी का और लॉस होता है,
0: लॉस होता है,
1: जिससे डिहाइड्रेशन और बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, आगे हम जानना चाहेंगे आपसे कि लक्षण यदि आपको समझ में आ गए हैं तो आपको उपचार की तरफ बढ़ना है। उपचार आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, क्लिनिक में जा सकते हैं, और स्वयं भी उपचार कर सकते हैं यदि बहुत सीवियर अवस्था में नहीं है, बहुत जटिल अवस्था में नहीं है। तो क्या वो उपचार हैं, फर्स्ट एड जिसे कह लें, प्राथमिक उपचार जिसे कह लें, जिसे मरीज शुरुआती घंटों में स्वयं कर सकता है?
0: बिल्कुल, ये प्रारंभिक जो उपचार है जो आप खुद करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर इसको सही तरीके से कर लिया गया, समय रहते कर लिया गया, तो जो परमानेंट डैमेज होता है बॉडीज में या बॉडी के जो ऑर्गन्स में डैमेज होता है जिससे कि कंडीशन क्रिटिकल होती है, उससे कहीं ना कहीं हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मतलब इमेजिन करें कि आप किसी पार्क में घूमने गए हैं और काफी धूप है वहां पे, और आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो ऊपर हमने अभी बात किया कि अगर वो कोई भी उनमें से लक्षण आपको प्रतीत होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि छायादार ठंडी जगह पे आ सकते हो आप, वो हो सकता है कोई वृक्ष के नीचे आ सकते हैं, कोई सेडेड प्लेस में, छायादार प्लेस में आ सकते हैं, इवन आपको वहां पे कहीं एयर कंडीशन की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है, तो वहां आ सकते हैं। सबसे पहले आपको हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड, अगर आप खुद कर पा रहे हैं, जैसे आप ही को हीट स्ट्रोक हुआ है, तो जो एक्सेस आपने क्लॉथ पहने हुए, कपड़े पहने हुए हैं टाइट हैं, जो हैवी हैं, उनको निकाल दें। क्यों? क्योंकि जो हैवी कपड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो पसीने का उत्सर्जन है, ये स्वेटिंग से जो कूलनेस आती है बॉडी में, उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं, जिससे हमारी बॉडी कूल नहीं हो पाती,
1: रोकते हैं उसे,
0: रोकते हैं। बिल्कुल, आपको कपड़े ढीले करना है, आपको फिर उसके बाद जो करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर इमेजिन करें कि आपके किसी साथी को लू लगी हुई है, तो उसके उसके शरीर पे एकदम पतला सा एक कपड़ा रखना है आपको, बिल्कुल ढीला रहे जो, और उसको जितना हो सके उतना ठंडी चीजों से एक्सपोज करना है, उसके शरीर के सरफेस को ठंडी चीजों से एक्सपोज करना है। एक हम टेक्निक बोलते हैं जो अपन कर सकते हैं, कोल्ड वाटर इमर्सन, जिसमें बोलते हैं कि आम भाषा में ठंडे पानी में डुबो देना, जैसे कोई टब है आप उसमें पेशेंट को या जो अफेक्ट हुआ है उसे, उसको आप ठंडे पानी में डुबो के रख सकते हो, सिर बाहर रहे उसका, और आप उसके शरीर पे गीला कपड़े से पूरा पोंछ सकते हैं, एक पतली सी चादर उसको ठंडे पानी की उड़ा सकते हैं, इवन आप उसको आइस वाटर बाथ दे सकते हैं, मतलब जो आइस वाटर होता है उसकी भी एकदम ठंडे पानी की भी बात आप उसको करा सकते हैं, स्नान उसका करा सकते हैं। आपके पास अगर आइस पैक्स की व्यवस्था है या कोई नई भी है, तो आप जो टॉवल्स होती हैं उससे बर्फ के पानी को गीला कर लें, और उन टॉवल्स को पेशेंट के या मरीज के सिर पे, गर्दन पे, जो अपने आर्म पिट्स होते हैं जिनको अपन काखें बोलते हैं, उनमें रखना है उन टॉवल्स को, ग्रोइन वाला रीजन जिसमें कि जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं या थाइस के जो अपने अंदर वाला भाग होता है, जहां से आपकी बॉडी का कूलिंग या जहां पे पसीना सबसे ज्यादा आता है अगर बात करें, तो उन जगहों पे आपको आइस पैक्स रखने हैं, या जो गीली टॉवल होती है लो टेम्परेचर वाली ठंडी, उनको आपको रखना है। एक और अच्छी टेक्निक होती है एवेपोरेशन टेक्निक्स ऑफ कूलिंग, जो कभी कभी हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें बेसिकली एक मिस्ट, ठंडा पानी का मिस्ट होता है, फव्वारा होता है, या एक फुहार जिसको अपन बोले, वो फुहार मरीज के बॉडी पे आपको डालनी है, और एक फैन से हवा ब्लो करनी है, ताकि जो एवोपोरेशन हो वाटर का वो हो, और आपकी जो शरीर है वो कहीं ना कहीं ठंडा होता जाए,
1: जो फुहार निकल रहा है वो हवा के माध्यम से आपके शरीर तक जाए,
0: हवा के माध्यम शरीर तक जाए, और जो गर्म हवा आप हल्की सी जो फैन से आ रही है वो उसको एवोपोरेट कर दे, आप वाष्पीकृत कर दे सरफेस से, तो जो वाष्पीकृत होगा उससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी है उससे जो गर्माहट है अंदर, जो कोर आपका जो गर्म हुआ है वो ठंडा होगा, क्योंकि वो जो पानी है वो जब वाष्प में बदलेगा तो हीट आपकी बॉडी से लेके ही जाएगा, तो उससे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपके पेशेंट को ठंडा करने की कोशिश करना है, ट्राई टू कूल द पेशेंट।
1: कुल मिला जुला करके डॉक्टर

0: अब आपके कहने का जो आशय ये है, जितने भी टेक्निक्स आपने बताए हैं उन टेक्निक्स के माध्यम से मरीज के तापमान को कैसे कम किया जाए, कैसे उसको जो है ठंडा किया जाए, ये मकसद है डॉक्टर साहब।
1: और उसके बाद एक और जो आप चीज कर सकते हैं, ये तो होगी बाहरी चीजें, और एक जो अंदरूनी चीजें हैं वो ये है कि आपको उसको तरल पदार्थ काफी देना है, क्योंकि आपके पसीने से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट आप हो चुके होते हो। अगर आप उल्टी दस्त हो रहे हैं तो उससे भी आपको डिहाइड्रेशन हो गया होता है, तो इसमें आपको काफी तरल पदार्थ देने हैं। खासकर जो हमारे आम भाषा में अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉल आप दे सकते हो, ORS का आप उपयोग कर सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विस्तार से सारे बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डाले, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर अनुराग जैन साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर है मेडिसिन विभाग में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से, आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाला और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
2: लू के लक्षण और उपचार जा भेंट वार्ता अवे अपन ने सुनी डॉक्टर अनुराग जैन से जानकारी लई दीपक निषाद ने। बहनों अवे हमने कही थी पहले कि सबसे मिलवे जुर्वे से मन खुश हो जाते है और हंसी चिटोली भी हो जाते है, और फिर नंद भौजाई को तो रिश्तों ही ऐसो है जिमें खूब नोक झोंक है, हंसी मजाक है, रूठबो है, मनाबो है, मतलब सवाई कछु है। और जब नंद को ब्याह नव नव भाव हुई तो फिर भौजाई को तो और मौका मिल जाते है नंद को छेड़बे को नहीं या। तो सविता यादव को गाँव भाव एक लोकगीत हम ले आए हैं आप औरों को सुनबे के लाने, जे में नंद भौजाई दोई बतिया रही हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: चलो बहनों, ये लोकगीत के बाद और ये संदेश के बाद आप औरों को फिर से स्वागत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी में। बहनों अब जा और कहें हम कि कल यानी 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाओ जात है। आजकल कहा है सखियो के व्यस्त दिनचर्या में अपन नियमित व्यायाम नहीं करत हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रख पाते हैं और तनाव बहुत है आजकल, खान पान सुरक्षित नहीं है, दिन भर भागम भाग सी है, आराम की कमी है, नींद भी कम है। इन सब के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो जा रही। छोटी मोटी समस्या या आम शारीरिक समस्या नहीं है बहनोजा, हार्ट संबंधी बीमारी या और भी जैसे स्ट्रोक जैसी बड़ी समस्याओं को कारण भी बन जाते हैं हाई बीपी। तो कभी भी शारीरिक रूप से कोनो उतार चढ़ाव, कोनो बदलाव, कोनो परेशानी आँखों समझ में आउत है तो बिल्कुल ओखों आई गई नहीं करने, अपन को बिल्कुल लापरवाही नहीं करने, तुरंत परिवार के सदस्यों से चर्चा करने, डॉक्टर को दिखाऊने कहाओ, कैसे नियमित जांच रक्तचाप की कराई जाए, यही बात के प्रति जोर देवे किला ने 17 मई को दिन निर्धारित करो गए है। और ये बार को तो विषय है ही उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। तो बहनों अपन को नियमित जांच कराउत रहने और अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने, है ना। चलो अब हो रहा समय आपसे विदा लेवे को, तो जानकारी आपको कैसी लगी, लोकगीत कैसे लगे, सब हमसे आप लिख के बताओ। और सुरक्षित रहो, हंसी मजाक करत रहो, खूब ब्याव बरातें करत रहो, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखो। इन्हीं सब बातों के संगे हमें देव अनुमति और आप सुनत रहो आकाशवाणी सागर।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम लक्ष्मी, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा ये गीत। संगीत सपन जगमोहन का है।

देश में निकला होगा चांद और मधुर मन में गीत गाता होगा। सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में भरत व्यास का लिखा ये गीत। संगीत रमेश नायडू का है।

मन्ना डे के स्वर में आपने सुना ये गीत श्याम सागर का संगीत था। और अब सुनते हैं इंद्रानी रिजवी और राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और संगीत है बेनी सतमाकर का।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी शो। मैटनी शो में आज बातें और गाने उन फिल्मों के जो अपनी रिलीज के बरस के मुताबिक आज उम्र के खास पायदान पर जा पहुंची हैं, यानी साल 2026 में या तो पहुंच चुकी हैं या पहुंच जाएंगी। रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफ़र पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज़ हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गाँव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आईं और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। देखते ही देखते साल 2001 की सफलतम फिल्मों में शुमार होने लगा फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक खास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था, चलिए इस गीत की एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था ए आर रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज हुई थी, 15 जून 2001 को, और काफ़ी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएं

आई थी सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलिट दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म, इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

और ये जो गाना आपने सुना गदर फिल्म का उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की आवाज़ शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी, और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज हुई थी, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, दस नंबरी, हेरा फेरी, चरस की तो हमने बात की अभी, फकीरा, कालीचरण, माँ, दो अनजाने, नहले पे दहला, शंकर दादा, बारूद, चिच्चोर, छोटी सी बात, ये सभी फिल्में काफ़ी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई थी, लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की, जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज़ हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नज़र आए थे अशोक कुमार, ऋषि कपूर, शोमानंद, अजीत और रीना रॉय, और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

बारूद फिल्म का ये गाना बना आज के मैटिनी शो की आखिरी पेशकश। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

0: जीव होइ हे नाना ललना दीव होइ हे हो।
1: इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।

0: इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए ₹50 करोड़ का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹30 करोड़ तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जाँच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

नमस्कार, मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छांव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो मैं बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफ़ी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाए गाना तो वाह वाह, और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है, हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सब ने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसी भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेईमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है, और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिए की बात चली है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है। वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज़ थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें ज़रूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं, बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट, रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही।
अब कार्यक्रम का ये गाना बताइए, किनके स्वरों में ये गाना है?

0: में पतझर, बहारों में मैना कभी डगमगाओ।
1: फूलों में कारों में पतझर, बहारों में मैना कभी डगमगाओ।

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीज़ें और भी जलती थीं, और कई चीज़ों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी, कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे। सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांद ही ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफ़ी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नज़र आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही हितपोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं, पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती, कलियां महकती, फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। और हाँ ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी?

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैंप की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है। इन्होंने लालटेन की बात कही है और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की। फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे, शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूँ तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है, मगर मेरी किस्मत देख जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था, आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है। और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही

ये अपना अलग जादू और सुकून है। जहाँ सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक

चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना, माशा अल्लाह कह

सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ है और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो अगर सूरज दादा ना होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, ना पेड़ पौधे होते, ना हम होते, ना पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के जमाने में बिहार

0: में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी। तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए। फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है। क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था। साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था। ज्यादातर घर के बड़े लोग ही इसे शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था। बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे। आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे, जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा। गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है।

पारसमणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगल विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया। मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ।

बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना,

तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई, पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे, पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहाँ, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणी फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणी फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें गाना मंजिल शब्द पर।

0: गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जय भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने। और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें यह भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।
1: छोटी सी ये दुनिया,

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरी लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगति और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई, या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया। याद हो तो बताएं। और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था, तुम टूर पे जाते हो, क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला, एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही हैं ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाजें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज़्यादा सुने गए, उन्हें ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजों में। बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें एक बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्मपत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाजत देनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: app now and watch for free.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत से सजा गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीत संगीत एक बार फिर हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन का। फिल्म है आरज़ू।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत भी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होंगी।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
3: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
1: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मरीजों के निःशुल्क डेंगू और मलेरिया की जाँच की जा रही है। जबलपुर में आज न्यायपालिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजनरी एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आधारित इस सेमिनार में न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

0: न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में बोधिशाला को राजा भोज के समय का वागदेवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। सतना जिले के चित्रकूट में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात में भी तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, धार और देवास सहित कई जिलों में तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। विश्व कप T20 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने शनिवार सुबह उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित अन्य खिलाड़ियों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी सर्किल जेल के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल एंड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें बंदियों और परिजनों को निःशुल्क आर्थिक सहायता मिलेगी। थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर अनुवांशिक रक्त विकारों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज रायसेन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। CBSE ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं।

0: एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
6: If you heard me earlier,
5: अगर आपने मुझे पहले

सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र दुआरे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात

0: टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: मैं कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जय किशन ने।

0: ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।
1: जो फिर से तो आया।

0: बतिया तुसे मिल नहीं जुलम भया रे जोगी जब से तू आया मेरे प्यारे।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
2: मन चाहेगी मन चाहेगी

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं। इस गाने को सुनना चाहते हैं जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये तिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत, बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ, सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: गीत

0: चाहे कि
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन, इस पर दया कीजिए।
0: अरे ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
3: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
3: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
3: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
3: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
3: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला?
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
3: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
4: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
3: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं।
2: यहां तो
0: क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं, और लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
3: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
4: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
5: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
3: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
5: लताएं भी रूठती हैं क्या?
3: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
4: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
3: क्या समझी है तू?
4: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
3: वो कैसे?
4: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से?
3: अरे अनुसुईया, ओह, सरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
4: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
3: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
4: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
3: धत।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
3: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
4: तेरे मुंह से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
3: परिहास ना कर।
4: अच्छा नहीं करती, बता।
3: देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई। नहीं,
4: तेरी तरह
3: फिर परिहास।
4: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
3: हाँ बता।
4: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
3: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
4: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
3: अच्छा,
4: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
5: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
3: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
6: ओह, अरे ये भौरा कहां से आ गया?
3: अरे ओह,
6: अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। ओह, अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
4: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
5: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
4: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
6: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
2: पृथ्वी पर पुरुवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
4: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
5: आपके आते ही भाग भी गया।
4: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजी ना,
5: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
2: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
4: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
5: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
2: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठिए ना आप लोग भी।
6: ना तुम लोग बैठो, मैं भी।
4: अब बैठ भी जा।
6: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
4: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
5: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
2: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
4: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
2: और ही ढंग से?
5: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
6: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
2: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
4: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
5: बहुत मीठा है इसका गला,
4: करती रहती है सबका भला,
5: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
4: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है,
5: कुलपति कर्ण की सबसे लाडली बिटिया है।
2: किंतु कुलपति कर्ण तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
4: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कर्ण ने इसका पालन पोषण किया है।
2: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
5: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
2: फिर
5: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर
2: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
4: क्या आर्य?
2: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
4: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
6: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
4: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
5: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
2: वृक्षों को सींचने का ऋण?
4: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
5: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
2: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
4: आप
2: ये लीजिए
4: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
5: आपके पास ये अंगूठी?
2: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
4: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
5: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
2: मैं आभारी हूँ।
7: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
2: ओह, लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
6: हे भगवान, अब क्या होगा?
7: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्चृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है। सावधान
6: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
5: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
2: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा।

0: मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
1: चलो शकुंतला। चलो
2: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो। प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो। भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना। गधा, घोड़ा, बैल, मक्खी, मच्छर, कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है। शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है। अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है! आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे? अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेष क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यार।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
6: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
6: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता

0: क्या क्या क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव।
1: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
0: एक काम हो सकता है माधव,
1: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं।
0: नहीं माधव, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
1: मैं तुम्हारे स्थान पर?
0: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
1: ठीक है, महाराज दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
0: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
1: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
0: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
2: कहिए महाराज।
0: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
1: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
0: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
2: जो आज्ञा महाराज।
0: जाओ युवराज।

0: आह, कितनी प्यारी पवन चल रही है। अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: ए, इसी से पूछकर देखे।
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं? तुम बताओ तो, इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: ए, मुझे एक उपाय सूझा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं।
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला,
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
2: अन्ना जी के सिवा और वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं।
1: अच्छा,
2: मैंने
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका नाम था। तो हम शो करते थे षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग। तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के, यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया। तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके घर में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब
2: श्री रामचंद्र जी, तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम में तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पर करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाइश दे रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दिया, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
1: अच्छा।
2: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है, नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था, वो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एमवी में।
1: अच्छा।
2: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
2: एक समय काली पास सुर है, तो खर्च के जो सुर होते हैं, आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने वो ज्यादा ऊंचा ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल। नहीं नहीं नहीं नहीं वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
1: जी जी,
2: ये दोनों में फर्क था, संजी और अन्ना जी।
1: अन्ना जी को, यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें, तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
2: बहुत,
1: उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये तो समझ में आता है। कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ, लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत
0: ये
1: दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद चारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ।
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
0: अच्छा।
1: लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे ये कहा था, जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा, अच्छा। आशा जी की बात निकली है, तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से, ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नय्यर साहब का,
1: नय्यर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: शुक्ला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें, ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ।
1: तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो अरे
0: अच्छा, अच्छा।
1: आपने पहले नहीं गाया ऐसे, हाँ। और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उनके मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा।
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
0: हाँ।
1: मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अंबा, वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं, वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना,
0: हाँ।
1: तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे,
0: हाँ।
1: बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रे का फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: अच्छा,
1: था बहुत बड़ा कटआउट बनाया था,
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था
0: जी, जी, जी।
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्ता और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,
0: हाँ।
1: मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा।
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम रहा,
1: ऐसा
0: अच्छा,
1: लगता
0: अच्छा,
1: था
0: अच्छा।
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ।
1: मेरी मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं, वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ
0: अच्छा।
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा,
0: क्या बात, क्या
1: लेकिन
0: बात।
1: मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, जी, मैंने जी, उसको जी। बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया,
0: हाँ,
1: कि
0: हाँ।
1: ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, हाँ। ऐसा गाना गा, फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं,
0: हाँ,
1: लेकिन अनुभव से,
0: हाँ,
1: आपको मालूम होना चाहिए,
0: हाँ,
1: कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं,
0: जी, जी,
1: एक साथ लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं,
0: अच्छा, अच्छा।
1: फिर दो गाने के बाद ये गाना कोडा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती बात, और जहां तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गाँव में छोटे से गाँव में भी, तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा,
1: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
0: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है
1: फर्क? नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे,
0: अच्छा,
1: ये है अच्छा लोग, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं, तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे, पहला पमिला भी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
1: वो रफी साहब का गाना एक डुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, हाँ। और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको,
0: हाँ, हाँ।
1: रफी साहब पहले शुरू करते थे,
0: जी।

0: ना फिर जानी विस्की और परसों भी रहेगा और तरसों भी। मैं क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते।
1: जी जी जी। तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा ना।
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी,
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना, ये होता है, ये ठपका दोष आता है, इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश थी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पुणे के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने महाराष्ट्र को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है, दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो तो
1: जरूर,
0: सवाल ही नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर होता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगे कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनके कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
0: प्राइवेट शोज भी होते,
1: प्राइवेट शोज भी होते थे
0: कंपनी के लिए,
1: कंपनी के लिए किसी कंपनी के लिए तो बहुत शो हुए।
0: अच्छा।
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियलिस्ट बम्बई के आसपास और बाहर गांव में भी बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे, नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
0: जी जी। प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं, सबका अपना अलग अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है, ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और उनकी विशेषता होती है, फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, किन कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा।
1: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा।
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे

0: हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है। ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं उसका एक किस्सा बताती हूँ। मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
1: अच्छा।
0: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाने
1: जी, जी।
0: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और उसमें सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो नंदूरवार करके गांव है छोटा सा धुलिया के पास
1: जी।
0: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह। तो आया वो, आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था। तो नहीं, वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया।
1: ओ।
0: वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, आमिर खान साहब की गाई हुई है वो। तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा। म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
1: तो श्रोताओं में समझ
0: में आ जाता है। बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से।
1: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है, तो
0: उनके दिमाग में
1: वैसा वो सुनना चाहते हैं।
0: अभी ये गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, वो आना ही चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना। इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
1: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
0: जी,
1: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
0: नहीं है, सही बात।
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना
0: बजा करके
1: अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए।
0: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वही। और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए, नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था सालों साल तक
1: जी।
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से। तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नई थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन काल के हिसाब से तो बदली हो जाएगा
1: जी।
0: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो
1: जी,
0: बस दूसरी रिहर्सल नहीं। हाँ, एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो बात। जी तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है
1: जी।
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी।
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड, उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है। तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल। तो एक रिहर्सल और
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: फिर भी लोगों ने पसंद किया इसको, शो को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मानके बोलूंगी, विनय मानके,
1: विनय मानके,
0: विनय मानके
1: जी जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से ये विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज हम सुनते हैं
0: जी, जी।
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे, बहुत सारे जिंगल गाए उसने। और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्म होता है वो था, बहुत सारे हल्के बुल्के बातें भी करने का बीच में।
1: अच्छा।
0: मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे
1: जी,
0: नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के।
1: अच्छा।
0: तो ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा। फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा
1: गया। बहुत अच्छे।
0: फिर एक गाना था अन्ना जी का, बोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली कान में बाली हाँ। तो ये बोला ऐसा हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता,
1: मस्ती के मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसका। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब था, अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए, पड़वा के शो, वसंत दादा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए, वो बड़ा शो हुआ करता था। और तो मैं किसी को बुलाती थी
1: जी,
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, हाँ। प्रभु कुंज में, तो उसी सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली। सामने दर्शन हुआ साक्षात, तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढीपाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं

0: खूब इच्छा है।
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन वो बाहर गांव जाने वाली थी।
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा।
0: आई। फिर मुझे उन्होंने पूछते है कि कसे भाव तुम्ही असे प्रोग्राम करता है, उडे प्रवास करायचा, पर गायला उभा राहायचं कसं करता? म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है।
1: हाँ, हाँ।
0: हो जाता है। मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी।
1: हाँ।
0: कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं।
1: हाँ।
0: पूरा मालूम
1: था, मालूम था उनको। क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए।
0: जी, हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका एक सजा फिल्म का गीत है।
1: हाँ,
0: वो मैं शायद

प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो

0: गीत है जो रावणी है, पाड़ा ला पिकला अम्बा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी एक झलक सुनेंगे
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: हो मसला बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, नमुना बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, हो पाहुन पाहुन पाहुन जरा थांबा, हो पाहुन जरा थांबा, पाडा लपिकलाय आंबा,

0: ओ पाउन पाउन पाउन जरा थांबा हो पाउन जरा थांबा आर घे पडाला पिकलाय आंबा आला बाई पडाला पिकलाय आम हो नीट बघ पडाला पिकलाय आंबा कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये आंबा ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी।
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ाल पिकला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हैं आप अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अम्बा आता था सामने से मजा आता था उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया उनको भी शायद
1: प्रमिला जी आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर
0: हाँ
1: सुनाया करती
0: गाती थी हाँ।
1: और अपने लिस्ट में
0: कनाडा गाना सुनाती हूँ
1: जी जी जरूर
0: मेरी
1: जरूर।
0: लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ,

0: खिलाना बहुत उधर है। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं, हाँ, हाँ, शॉर्ट वो पहन वाले बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नवो पिक्चर ना गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई,
0: हाँ
1: होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: हाँ जी,
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: और तब की जो उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें।
1: अच्छा?
0: जो लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ?
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर। हाँ, हाँ, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे।
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए। लेकिन एक अवारी जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, पाड़ाला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा।
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वही गाने चाहिए लोगों को।
1: वाह वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन करके।
0: हाँ जी,
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये कर्म है कि आज आप यहाँ पधारी,
1: मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेशिस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञान और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। और IPL में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में KKR और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा।

दोस्तों, आजकल ड्रोन सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत जरूरी हो गए हैं। ड्रोन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसमें युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम निवेश में अच्छी कमाई और तेज तरक्की संभव है। कैसे, जानते हैं हमारी आज की युवाणी में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल अब कई क्षेत्रों में हो रहा है। कृषि में किसान ड्रोन से दवा का छिड़काव करते हैं, जिससे समय और पैसे दोनों बचते हैं। डिलीवरी कंपनियां भविष्य में ड्रोन से सामान पहुंचाने की योजना बना रही हैं। आपदा प्रबंधन में बाढ़ या भूकंप के समय ड्रोन से बचाव कार्य किया जाता है। इसके अलावा फिल्म निर्माण, रक्षा, निगरानी, मैपिंग और सोलर प्लांट जांच जैसे कामों में ड्रोन का बड़ा रोल है। तो इसमें क्या क्या जॉब्स मौजूद हैं, ये जानते हैं। दोस्तों, इसमें है ड्रोन पायलट, ड्रोन ट्रेनर, ड्रोन टेक्नीशियन और रिपेयरिंग, डेटा एनालिस्ट जो कि ड्रोन से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं, ड्रोन सॉफ्टवेयर डेवलपर, ड्रोन सर्विस कंपनी शुरू करने वाले उद्यमी। दोस्तों, भारत सरकार ने ड्रोन नियम 2021 बनाकर इस क्षेत्र को आसान बना दिया है। अब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति DGCA से लाइसेंस लेकर ड्रोन उड़ा सकता है। कई ITI, पॉलिटेक्निक और प्राइवेट संस्थान सस्ते कोर्स चला रहे हैं। इसमें 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप जॉब या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कमाई की बात करें तो शुरुआत में 20,000 से 40,000

रुपए महीना आसानी से मिल सकता है। अनुभव के साथ 1 लाख रुपए तक सैलरी या प्रति प्रोजेक्ट अच्छी कमाई संभव है। गांव कस्बों में भी कृषि ड्रोन सर्विस देकर आप अच्छा व्यवसाय चला सकते हैं, तो इसमें तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दोस्तों, 2025 से 2030 के बीच ड्रोन इंडस्ट्री भारत में हजारों करोड़ का कारोबार करने वाली है। इसलिए अगर आपको टेक्नोलॉजी, उड़ान और नई चीजें सीखना पसंद है तो ड्रोन क्षेत्र आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, आज पढ़ाई के साथ साथ ड्रोन कोर्स करके आप खुद को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। मेहनत और सही ट्रेनिंग के साथ ये क्षेत्र न सिर्फ रोजगार देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा भी बनाएगा। तो अब आप भी अपने ख्वाबों की उड़ान भरिए एलिसा मेंडोसा और मोहित चौहान के गाए हुए इस खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में संतुलित जीवन शैली मतलब बैलेंस्ड लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी हो गई है। संतुलित जीवन का मतलब है काम, आराम, स्वास्थ्य, परिवार और खुशी के बीच सही तालमेल बैठाना।

जब हम इन सब को संतुलित मतलब बैलेंस्ड रखते हैं तब हम स्वस्थ खुश और सफल रहते हैं। तो अगर आप भी हेल्दी हैप्पी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इनमें सबसे पहले है आपकी फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। तो रोज कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करें, चाहे वॉकिंग हो, योगा हो या फिर जिम। साथ में अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। ज्यादा जंक फूड से बचें। रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। आपने सुना होगा, तन चंगा तो मन चंगा। इसके बाद आती है आपकी मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य। अब क्योंकि तनाव आजकल बहुत आम है तो रोज 10 से 15 मिनट ध्यान मतलब मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। बुक्स पढ़ें, म्यूजिक सुनें या अपना कोई शौक पूरा करें। और हाँ, निगेटिविटी से दूर रहें और छोटी छोटी खुशियों को इम्पोर्टेंस दें। अब है आपके काम और आराम के बीच का संतुलन मतलब वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, काम तो जरूरी है लेकिन काम के अलावा परिवार के साथ समय बिताएं, दोस्तों से मिलें और छुट्टियां मनाएं। ऑफिस के बाद फोन बंद करके परिवार के साथ डिनर करें। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है वरना बर्नआउट हो जाता है। आपके रिश्ते और सामाजिक जीवन मतलब रिलेशनशिप्स एंड सोशल लाइफ का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छे रिश्ते हमारी जिंदगी को मजबूत बनाते हैं। माता पिता, लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ समय बिताएं और जरूरतमंदों की मदद करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। और ये सब होगा समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट से। आप हर दिन का प्लान बनाएं, जरूरी काम पहले करें और नहीं बोलना सीखें। दोस्तों, हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जीने वाले लोग ज्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव होते हैं और बीमारियों से दूर भी रहते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वो अपनी लाइफ को मजे से जीते हैं। तो जब वो अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जीते हैं, खुश रहते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें। रोज एक नई अच्छी आदत डालें। सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश ना करें, बस कोशिश करें कि जीवन के हर पहलू को थोड़ा थोड़ा समय मिले, क्योंकि हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। जब हम बॉडी, माइंड, वर्क एंड रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखते हैं तब लाइफ मीनिंगफुल और जॉयफुल बन जाती है। तो आइए आज से ही हम सब मिलकर संतुलित जीवन मतलब हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएं। और अब आपको सुनवाते हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की खूबसूरत आवाज में ये मशहूर गीत।

0: और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं शिवांजलि तिवारी से आकाशवाणी के 90 साल होने पर हुई हमारी बातचीत के कुछ अंश।
1: मैं तो बचपन से ही इसके साथ बड़ी हुई हूँ। पुराने जमाने में टीवी मोबाइल कुछ नहीं था, तब गांव कस्बे में आकाशवाणी ही सबसे बड़ा साथी था। मेरे दादाजी कहते थे, बेटा आकाशवाणी झूठ नहीं बोलता। आज के फेक न्यूज वाले समय में तो एक कितनी बड़ी बात है। 1947 की आजादी, 1962 का चीन युद्ध, 1971 की जंग, सब कुछ आकाशवाणी ने ही बताया। अब तो स्मार्टफोन आ गए, रील्स ने सब बदल दिया, लेकिन फिर भी आकाशवाणी का अपना स्वाद है। लोकल भाषाओं में कार्यक्रम, क्षेत्रीय गाने, संस्कृति, बातें, ये सब मोबाइल वाले एप्स में कहाँ मिलेगा। मेरी माँ अभी भी दोपहर को महाभारत या पुरानी कहानियाँ सुनती है, शाम को युवावाणी, महिला सभा, चौपाल, गृहलक्ष्मी, यह सभी कार्यक्रम हमारा पूरा परिवार सुनता है। 90 साल में आकाशवाणी ने बहुत कुछ देखा है, ट्रांजिस्टर से लेकर अब ऑनलाइन स्ट्रीम तक, लेकिन जो चीज नहीं बदली है वो है विश्वसनीयता और भारतीयपन। आज भी दूर दराज के गांवों में जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा, वहां रेडियो आज भी राज करता है। 90 साल मुबारक हो आकाशवाणी। उम्मीद है अगले 90 साल भी आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। आज इस तरह से आपसे बातें करके आपका हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप शिवांजलि तिवारी को सुन पा रहे थे, जिन्होंने आकाशवाणी को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की खूबसूरत आवाज में ये मशहूर गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ समय हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मोड़ते चित्रकला के बारे में। दोस्तों, मोड़ते चित्रकला एक ऐसी कला है जिसमें कलाकार बिना जीवित चीजों के चित्र बनाता है। इसमें फूल, फल, किताबें, बर्तन, बोतल, खिलौने या घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को सजाकर उनका चित्र बनाया जाता है। इसे इंग्लिश में स्टिल लाइफ पेंटिंग कहा जाता है। ये चित्रकला मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के आकार, रंग, प्रकाश और उनके छाया को सुंदर तरीके से दिखाना होता है। मोड़ते चित्रकला सीखने से बच्चों और कलाकारों की देखने और समझने की क्षमता बढ़ती है। जब कोई कलाकार किसी वस्तु को ध्यान से देखता है, तब उसे उसकी बनावट, रंग और आकार का सही ज्ञान हो पाता है। यही कारण है कि ये चित्रकला कला सीखने की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस कला में सबसे इम्पोर्टेंट बात है संतुलन और सजावट। कलाकार पहले वस्तुओं को अच्छे से सजाता है, फिर पेंसिल से हल्की रूपरेखा बनाता है। उसके बाद रंगों का उपयोग करके चित्र को आकर्षक बनाया जाता है। प्रकाश और छाया का सही उपयोग चित्र को जीवंत बना देता है। दोस्तों, मोड़ते चित्रकला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये धैर्य और एकाग्रता भी सिखाती है। इस कला को बनाने में समय और ध्यान दोनों की जरूरत होती है, इसलिए मन को शांत करने में भी ये मदद करती है। आज के समय में स्कूलों, आर्ट कॉम्पिटिशन और प्रदर्शनियों में मोड़ते चित्रकला का विशेष महत्व है। कई कलाकार इस कला के माध्यम से अपनी कल्पना और रचनात्मकता को लोगों तक पहुँचाते हैं। कहा जा सकता है कि मोड़ते चित्रकला एक सरल, सुंदर और उपयोगी कला है। ये हमें साधारण वस्तुओं में भी सुंदरता देखने की प्रेरणा देती है और हमारी कला प्रतिभा को निखारती है। ये कोई आज की नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ढेर लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम
1: कवि श्री राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: लड़की थी या अजूबा? अजूबा

अमित कुमार की आपस में लीना चंदा फरकर का लिखा ये गैर फिल्मी गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत नीलू निरंजन का था।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं तान्या की आवाज में गीतांजलि सिंह का लिखा ये गैर फिल्मी गीत।

संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं शान की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गैर फिल्मी गीत, संगीत शान का है।

संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं सुचित्रा की आवाज में अर्जुन राज का लिखा ये गैर फिल्मी गीत। संगीत है रहमान रंजन का।

संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में अहमद अनीस का ये गैर फिल्मी गीत। संगीत है राहत फ़तेह अली खान का।

0: रात फतेह अली खान की आवाज़ में अहमद अनीस का लिखा गैर फिल्मी गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत रात फतेह अली खान का था। इस गीत के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: अरे काय भैया, ये सब मुंह लटकाए काय घूम रहे थे?
2: अब का बताएं भज्जा, तुमकी कोनो ये कहूँ परेशानी हो तो बतावे। ये तो राम भाई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
1: अरे भैया ये सब का होगा, कुछ तो बताओ।
2: अब तुम्हें का बताएं भैया, कबहू जो ढोर बीमार कबहू वो ढोर बीमार, कहूँ ये खोजा परेशानी कहूँ वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
1: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगत है, ओ में आउट है आकाशवाणी में एक से एक सुरिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
2: अच्छा अच्छा हाँ। हाँ,
1: हाँ। मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20 है, और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845। बड़े समझदार हो, इसमें कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को, वो सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया। सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर है 9774 3227।
2: एक बीर फिर से बता दे भज्जा।
1: भैया फिर से लिख लो, इसमें कछु परेशानी नहीं, 9774 3227।
2: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लगा तो फिर बात साहब।
1: अरे
2: अच्छा जा बताओ भज्जा, ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
1: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें लगा।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

धड़कन तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग लेकर हम फिर हाजिर हैं। सुनिए 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गाना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता। आशिक का तेरे क्या होगा अंजाम तो बता। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। पेश हैं सदाबहार गीत।

दुल्हन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं इंद्रजीत फिल्म का गीत आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। गीत गुलशन बावरा का है, संगीत आर डी परमन का।

आइए अब सुनते हैं दोस्ताना फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्ताना फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

देवकी नंदन सकवार और साथियों से अभी आप सुन रहे थे ये लोक शैली पद गणेश वंदना। आइए अब सुनते हैं कामोद अहिरवार से ये तमूरा भजन।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: लोकरंग कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं रामेती बाई और साथियों से ये विदाई गीत।

रामी तिबाई और साथियों के गाए इसी विदाई गीत के साथ लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7 बजने को हैं, हिंदी में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास, नवाचार, RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको जानकारी देते हैं आज के बाकी कार्यक्रमों की, साथ ही कल के मुख्य कार्यक्रमों की। शुरुआत करते हैं आज के बाकी कार्यक्रमों से।

अब से कुछ ही देर में यानी 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से। खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसानवाणी 7:20 से। चित्रपट संगीत रात्रि 8 बजे और संगीत सरिता 8:20 से। समाचार संध्या 8:45 पर और 9 बजे आप सुनेंगे अपनी फरमाइश की फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। नौ बजकर 30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम होंगे मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार 11 बजे और अंग्रेजी में समाचार 11:05 से। और 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण संपन्न होगा।

0: आइए अब एक नज़र डालते हैं कल दिन भर के मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ 6:30 से। भूले बिसरे गीतों का आनंद आप ले सकते हैं 6:40 से। संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 7:05 से। रेडियो पत्रिका गागर में सागर आप सुन सकते हैं 7:20 से। संगीत सरिता कार्यक्रम होगा 7:50 से। लोक संगीत कार्यक्रम 8:15 पर और बच्चों का विशेष कार्यक्रम होगा बाल सभा 8:30 से। फोन करें, गीत सुने, यह कार्यक्रम सुना जा सकता है सुबह 10:05 से। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी कल शाम 5:02 से। मैं सागर हूं, यह प्रायोजित कार्यक्रम 5:30 से। संगीत सरिता 5:40 से। कल शाम 6:30 से सदाबहार गीत लोक रंग कार्यक्रम होगा 6:45 से। शाम 7:30 पर भोपाल केंद्र से ग्राम सभा। सुर्खियों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से 8:00 और प्रायोजित कार्यक्रम डगर विकास की 8:15 पर। चित्रपट संगीत 8:30 से और मनचाहे गीत रात्रि 9:00 से। तो ये थी जानकारी आज और कल के कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी सागर है, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की न्यायपालिका को 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना होगा, कहा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हैग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में हो रहे हैं।
1: आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है।
0: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आज जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री बेगवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ये पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: खास करके आज के समय में जब FIR से लेकर के बीच की बहुत सारी कड़ी होती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सब के आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले उस तक मदद पहुंचाए। क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी, न्याय का मतलब ही है अन्याय से मुक्ति।
0: शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज NEET UG 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका है। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

0: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि डेंगू बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता, जागरूकता और सतर्कता बहुत जरूरी है। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन कर मरीजों की निःशुल्क डेंगू और मलेरिया की जाँच की गई। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक बोधशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वागदेवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। धार जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने कहा कि शहर में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं।
1: शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, आम जनता अपना रूटीन वर्क, रेगुलर जो रूटीन वर्क कार्य करे वो कर सके, इस प्रकार का कोई भय ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लगभग 1000 का फोर्स हमें उपलब्ध कराया है, जिसको विभिन्न फिक्स पैकेट और सेंसिटिव एरियाज में लगाया गया है।
2: सीसीटीवी कैमरे
1: देखिए, जैसे कि सीसीटीवी सर्वेलेंस के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की नज़र बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि या कोई भी इस पर पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
0: राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्णा जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला द्वारा सागर जिले के खुरई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। बच्चों में मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति और ब्रेन एक्सेस कौशल हेतु आगर मालवा में 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। खंडवा में डोडवाली अमावस्या आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सीहोर के बुधनी सिविल अस्पताल में पोषण टोकरी वितरण कार्यक्रम किया और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। शिवपुरी कलेक्टर ने आज बिछोर में सनघाटा सिंचाई परियोजना अंतर्गत सनघाटा डैम का निरीक्षण किया। नीमच जिले में आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर जमुनिया कला के औषधालय परिसर में योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुना जिले में किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के विकास खंडों में कृषि रथ के माध्यम से जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज किया गया। मंडला में आयोजित आदि उत्सव के दूसरे दिन रामनगर में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत की छटा देखने को मिली। संपर्क अभियान 2026 के अंतर्गत अशोकनगर जिले में 11 स्थानों पर विद्युत समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को आप सबकी अपनी बहन राम कुमारी ठाकुर और
1: नीरज सोनी की
0: राम राम, राम।
1: और राम कुमारी बिन्ना आज अपनो कार्यक्रम जो है बहुत ढेर सारी ऐसी उपयोगी जानकारियों से सजू धजू कहानो
0: बिल्कुल
1: कैसे देखो आज दिन कहानो शनिवार सो आज हमारे किसान भैया हरे बाट ही रहते हैं आकाशवाणी गाँव में
0: बिल्कुल
1: तो उके तहत देखो राम कुमारी बिन्ना इसे जो खास अपनो साप्ताहिक क्रम कहानो कैसे एक ऐसो दिन मिला था कि किसान भैया हरे ई दिन जो है अपनी खेती किसानी पशुपालन बागवानी की जितनी भी उपयोगी से उपयोगी चर्चा जानकारी अनुभव है वे सब बांटत हैं
0: बिल्कुल
1: तो किसान भैया रो आज अपने कार्यक्रम में आकाशवाणी गांव में रहने हैं और इमें अपन ने सागरई में जो है कनेरा देव और बागराज क्षेत्र की किसान भैयारों से खेती किसानी पशुपालन बागवानी की चर्चा करी थी
0: करी है बिल्कुल भैया और जैसो के अपन अपनी किसानी की चर्चा भी एक कार्यक्रम में लेके आते हैं वो में अपन चर्चा करें अपने किसान भैया ने देखो लगाए हैं जायद की फसल तो उनकी देखभाल कैसे करें ये पे अपन चर्चा करें संग ही भैया दिन दिवसों की जानकारी अपन अपने किसान भैयारों को देते हैं कैसे अपन अकेले किसान ही नहीं हर विषय पे उनको जागरूक और जानकार बनाओ
1: बिल्कुल और राम कुमारी बिन्ना ये इन जानकारियों को उद्देश्य जो रहा थे कि हमारे किसान भैया हरें अपने देश दुनिया को समझें स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें
0: माने
1: तमाम ऐसे उद्देश्य लेके अपन इन चर्चाओं को अपन लेके आते हैं तो अब अपन ज़्यादा बात आगे ना बढ़ाते भाई आ जाए अपनी चर्चा पे
0: बिल्कुल भैया तो आज अपन चर्चा कर रहे राष्ट्रीय डेंगू दिवस
1: बिल्कुल किसान भैया हरो ये दिवस को मुख्य उद्देश्य जो है अपने सभी जनों के लाने डेंगू बुखार के प्रति जो है जागरूक करबो और एक ही प्रसार को यानी बढ़ भी से रोकबो
0: बिल्कुल भैया के जो डेंगू हमारे किसान भैया रखो या कोनो भी जन समुदाय में कोई खो भी न हो बे
1: बिल्कुल भैया हरो डेंगू एक खतरनाक वायरल बीमारी कहानी जो एंटीज मच्छर इके काट भी से फैलते भैया हरो इन दिनों सबसे ज्यादा सावधानी इस क्षेत्र में काय बरतने पड़ा थे कैसे देखो अपन घरों में जो है खास तौर पे कूलर चलाते हैं कूलर में पानी भर रहा थे तो उखो समय समय पे खाली करत रहने कैसे जो भरो भाव पानी चाहे कूलर हो या घर के आसपास छोटे गड्ढा हो या कछु भी ऐसी चीज जहाँ पानी लंबे समय रुकत है उते मच्छर जरूर ही पनपते हैं
0: बिल्कुल भैया और एक मच्छर की खास बात जा है नीरज भैया कि जो साफ पानी में पनपते हैं जो एडिज जो मच्छर रहते हैं जो उनके काटवे से जो डेंगू बुखार आते हैं फैलत है जो साफ पानी में पनपत है तो साफ पानी को भी विशेष ध्यान रखने का
1: बिल्कुल और एक और जरूरी बात के किसान भैया जो मच्छर जो है आमतौर पे दिन के समय में काटत कहानो
0: बिल्कुल
1: अब बिन्ना इमें कौन कौन सी लक्षण हमारे किसान भैया को दिखाते हैं तो भी और उन पर चर्चा कर दूं
0: बिल्कुल भैया ये में अपन किलाने जैसे कोई किलाने तेज बुखार आ रहा हो शरीर में जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो सिर दर्द जोर से हो बे और एक के संग जो है अपने जो त्वचा रहते हैं
1: चकत्ता से आ
0: जाते हैं चकत्ता टाइप के निशान टाइप के दिखन लगत है लाल लाल गोल गोल तो अगर ऐसे लक्षण हमारे कोनो भी परिवार जनों को दिखाई देवे तो उनको ये पे ध्यान दाव चाहिए और तुरंत चिकित्सक से जो है सलाह लाओ चाहिए
1: बिल्कुल तो भैया अपन अपने घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देवे और खासतौर पे स्वच्छता बनाए रखे ऐसी विशेषज्ञ जो है वे सलाह देते हैं मच्छरों से बचने के लाने पूरी बाह के कपड़े पहनवो मच्छरदानी आदि लगा के सुबह बहुत ज्यादा कारगर उपाय है
0: बिल्कुल भैया वैसे तो गांव में और भी उपाय है मच्छरों से बचने के लाने लेकिन ये मच्छर की खासियत है कि जो दिन में काटा था
1: बिल्कुल
0: तो दिन में अपन को फुल बाह के कपड़ा पहनो चाहिए जहाँ बैठे पंखा वगैरह चला के बैठे के मच्छर अपने पास नहीं आ पावे इसे बचाव करें यही के लाने और भी मच्छरों से बचाव के लाने जो है अपने गाँव में कई प्रकार की पत्तियां जो ऐसी रहते हैं जिनके जलावे से वातावरण भी शुद्ध होते और मच्छरों से भी बचाव हो सकता है
1: बिल्कुल तो भैया हरो सतर्कता और जागरूकता ही ऐसी चीज है जो डेंगू से बचाव को सबसे सही उपाय विशेषज्ञ बताते हैं और ई दिवस को मनावे को हमारा उद्देश्य भी जो ही है कि हम ई रोग से जो है अपनों अपने परिवार को बचाव करते रहे निश्चित रूप से भैया हरो हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस पे अपन ने जो जानकारी आज चर्चा में ली है सो अपन अपनों ई रोग से बचाव

0: अवश्य ही करें।
1: बिल्कुल भैया, डेंगू से बचाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे इमें हो जो है भैया के जोन भी व्यक्ति को जो होते है या शिकार हो जाते हैं, वो किलाने बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी
0: बिल्कुल
1: पूरे टाइम से।

0: बिल्कुल किसान भैया। और अब अपन अपने कार्यक्रम में आउट हैं अपनी चर्चा पे। तो रामकुमारी बिन्ना, हमारे बहुत सारे किसान भैयाओं ने इन दिनों जायद में जो है मूंग की फसल ले रखी।
1: बिल्कुल भैया,
0: और इसमें भी खासी देखरेख की जरूरत रहा था।
1: बिल्कुल भैया, देखभाल तो हर ही फसल की जरूरी है, और जाका गर्मी की फसल है तो इसमें विशेष देखभाल की जरूरत।
0: और रामकुमारी बिन्ना, दो चीजें देखरेख में बहुत जरूरी मानी जाती है, खासतौर पे ऐसी स्थिति जो अभी बन रही है कि बद्दल हो जाते हैं आधे टाइम जो है घामो है, वो फिर बद्दल हो रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत पानी गिर जाए सुबह तो थोड़ा सा सही कहानू मनो। खास तौर पे जब ऐसो मौसम रहा थे तो रोग कीट बीमारियों को खतरा भी में बहुत बढ़ जाता।
1: बिल्कुल।
0: और एक दूसरी सबसे जरूरी कारज पानी रहता ही है। कैसे भैया, रो जायद की मूंग की फसल में समय समय पे पानी, जितने पानी उखो आवश्यक है भी देवो बहुत जरूरी है। गर्मी में जो है खेत की माटी बहुत जल्दी सूखा थे, नमी जो है बहुत तेजी से जो है गायब रहा थे, तो इन दो चीजों को अपन को खास तौर पे ध्यान रखने कहा। और कछु बिना अपनी जायद में मूंग पे काके वो चाह।
1: बिल्कुल भैया, जय बात है की जायद की जो भी फसलें हैं मूंग के संगे और भी जो फसलें किसान भैया ने लगाते हैं,
0: हाँ,
1: उनकी बराबर देखभाल करें। कैसे में भैया, एक बात और है, आप बताइए सांची कह रहे हैं कि ये फसल से जो है हमारे किसान की आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो जाते
0: बिल्कुल होते है, बिल्कुल होते
1: है। मजबूत हो जाते है और सालाना की आर्थिक स्थिति जो है सुधरत है। तो अगर ये में अपनी लागत डूब जावे मान लो तो किसान परेशान हो जाते, आर्थिक रूप से कमजोर होवे की वजह से साल जो है भैया फिर की परेशानी में निकरत है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे जोन भी किसान भैया ने जायद की फसलें लगाई हो वे भरपूर की देखभाल करें, समुचित प्रबंधन करें, देखभाल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन उनको प्राप्त होवे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होवे।
0: बिल्कुल, यही रामकुमारी बिन्ना, एक जायद की फसल कही जाते है, अतिरिक्त लाभ को जो समय
1: आते
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: तो हमारे किसान भैया बड़ी सूझबूझ से जो है वो फायदा उठाते हैं। किसानी जो है हर कदम पे किसान भैया अनुभवी रहते हैं, सो जितने भी उपाय उपचार जिम्मेदारी हैं वे सब निभाते हैं।
1: नीरज भैया अनुभवी रहते हैं, किसान बहुत अनुभवी हैं और लंबे समय से किसानी कर रहे हैं, सब चीज से परिचित हैं, मगर अपनों काम जो रही थे कि समय पे उनको आगाह कर दे।
0: बिल्कुल, सो अपन इन सब बिंदुओं को शामिल भी करत कहानी राम कुमारी बिन्ना। अच्छा बिन्ना, ई फसल में जो है इन दिनों कछु ऐसी दिक्कतें भी देखने में मिल रही हैं, खासतौर पे पत्ती पीली पड़ रही है।
1: हाँ हाँ।
0: तो उमे हमारे जो कृषि के विशेषज्ञ हैं वे खासतौर पे यही सलाह दी थे कि पानी को जो है समय समय पे ध्यान अपन को रखना है। अब काहू जाते कि जैसे मान लो एक आध बोछार पड़ गई तो हमारे किसान भैया 15 दिन 12 15 दिन 20 दिन जो है पानी से निश्चिंत मान लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अपन को ऐसा नहीं करना,
1: देखभाल बराबर करने हैं,
0: देख रेख करते रहने। अगर अपन को ऐसा लग रहा है कि खेत में नमी नहीं है
1: तो धीरज भैया हम जाके हैं कि चर्चा अपनी जारी रहे, आगे और भी चर्चा किसान भैया से करें, मगर पहले अपन सुन लें जी संदेश।
2: साथियों नमस्कार, सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्दन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इल्लाई, बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
1: कोई डर नहीं,
0: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान

0: जन कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: और नीरज भैया संदेशों के बाद एक बार फिर अपने किसान भैयाओं को अपन स्वागत करते हैं और चलते हैं सीधे अपने साप्ताहिक क्रम आकाशवाणी गांव में।

0: आज दिन शनिवार को अपना साप्ताहिक क्रम रहा थे आकाशवाणी गांव में, और अपने इस साप्ताहिक क्रम में आप सभी किसान भैयारों को अनुभवी और नवाचारी किसान भैयारों से मिलवाते हैं, ताकि जो भी किसानी में कार्य कर रहे हैं उनके बारे में अपन उनसे चर्चा करके और आपस में एक दूसरे के अनुभव बांट सकें और किसानी में लाभ ले सकें। तो आज के अपने साप्ताहिक क्रम आकाशवाणी गांव में के तहत हम सागरी में अपने एक किसान भैया से बात कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम उनके खेतई में उनके संगे चर्चा के लाने बैठे हैं, और बिजू है जायद में मूंग की फसल बह रखी है। भैया सबसे पहले तो आपको परिचय चाहते हैं, का नाम लिखत?
1: चूरामन पटेल।
0: कहाँ से कहा है?
1: बागराज बाड कन्हरा से।
0: चूरामन भैया, हम देख पा रहे हैं कि आपने जायद में जब मूंग लगा ली तो अब ठीक ठाक है पानी आने की स्थिति? बताओ क्या पानी देने पड़ा थे, अबे कितने पानी दे?
1: अबे पहले पानी लगा रहे हैं, कम से कम तीन अक पानी लगे,
0: तो अब पानी की तैयारी चल रही है?
1: हाँ, आधे से ज्यादा होगा वो है।
0: तो पानी कितने कितने अंतराल पे दे जायद की मूंग में?
1: ये में अपन ऐसा है कि वो तो गीली में गीलो कर रहे हो तो बहुत सपाट हो होते आई जमाने में, और कहूँ अपन ने ऊँचो ताव दे तो बहुत छोटी छोटी रह जाए।
0: माने एक औसत अपन माने तो कम से कम 15 दिन में एक आध पानी तो जरूरी है?
1: नहीं, कम से कम 10 दिन में।
0: 10 दिन में?
1: 10-8 दिन के बीच में, कहा गर्मियों को।
0: हाँ, कहा से गर्मी में कहा है, तेज धूप के कारण जो है जमीन सूख जात, नमी खत्म हो जात है। ये में कौन सी किस्म बोई थी जायद में मूंग की?
1: दिनकर।
0: अच्छा, बीज जो उपचार भी करो तो ये
1: साफ पाउडर से?
0: अच्छा, एक बात और बताए हमारे लाने के इन दिनों जो है गर्मी में एक तो कीट व्याधि थोड़ी सी कम होते है, मानो जायद की मूंग में कहूँ कहूँ देखी गई है कि बीच बीच में पानी गिरत है, थोड़ा सा मौसम बदलत है, तो कछु कीट प्रकोप भी होते हैं, कछु कीड़ा पतंगों को भी में डर रही थे, कछु रोग भी आते हैं, तो ऐसो कछु अनुभव है?
1: वो तो हमने अंदाज जो लगाओ कि अपने जानो मानो बीजा बाओ कछु नहीं होती, और तुमने लोकल बेदाओ तो कब खेत को खेत पीरो हो जाते, वो हमारे नहीं बोती आए, हमारे जानो मानो बीजा बूथ है ब्लॉक से।
0: जा सांची बात कह दई कि जांचो परखो जो हाँ। पेल से आप बोनी करत रहे हो वही बीज आप बोनी में लेत कहाने, ताकि रोग व्याधि कीट व्याधि कछु न होत कहानी। अच्छा दादा, प्लाउ भी करू जाते गर्मियों में, तो प्लाउ कितने एक साल में करा?
1: प्लाउ करा थे अपन कम से कम लगभग 3-4 साल में।
0: कब पर की कराओ? तिवरस।
1: तिवरस,
0: तिवरस कराओ तो हो, तो माने 3 अगले साल हुई है प्लाउ मान लो।
1: काम लग और इशू नहीं करा थे यहाँ,
0: मानो 3-4 साल में एक आदमी प्लाउ के लाने फिर पलटी करके। अच्छा, जोन साल पलटी करत हुई उसे जायद में फिर कोनो फसल ले वो संभव ही नहीं हो गया, फिर तो छोड़ने परत कहानो खेत ने
1: धूप लगाने।
0: अच्छा चूरामन दाऊ, एक बात और हमें बताओ, नाज की फसलों के अलावा साग सब्जी की फसलें भी अपने क्षेत्र में आप और बीजा लेते हो, तो बताओ कौन कौन सी फसलें लेते हो?
1: अब तो हमने सब फसलें बंद कर दी, हमें तो लेबर की समस्या बन गई है, लेबर नहीं मिलाती है। हमने तो गेहूं बो तो, और बरसात में सोयाबीन बो तो, सोयाबीन अपन ने बो तो इतनी जगह में 60 किलो, मतलब अच्छी किस्म को बाओ तो 60 किलो में अपन 10 क्विंटल होगा।
0: अच्छा, और गेहूं की क्या स्थिति रही थी?
1: गेहूं अपन ने लगभग 80 किलो बाओ तो 35-40 कट्टी निकली है,
0: माने ठीक है ठाक न करे मानो। अब जो ये बात पे भी निर्भर करत है कि बोनी आपकी थोड़ी पहल की हुई गई, जल्दी फसल आ गई, अब कछु किसान भैयारों ने जो देरी से आवे वाली गेहूं की किस्में बही थी कि हम भैयारों की तो फसलें खेत ही में खड़ी रहे, कछु की कटी दे रही है, तो उनको नुकसान भाव है?
1: विशेष कछु नहीं, यहाँ के लोग कलर चलोगा गेहूँ को भूसा को, और ऊँसो विशेष नुकसान नहीं भाव का है कि ओरी ओरी नहीं गिरी पाए अपने, थे कम गिरे हैं, छोटे छोटे गिरे हैं लेकिन गिरे हैं।
0: किसान भैयारों, आज के अपने साप्ताहिक क्रम में आप किसान भैयारों से चर्चा किसानी पशुपालन बागवानी से जुड़ी भाई लगातार जारी रहने हैं। मनो ए बीच में सुना थे एक बहुत ही प्यारो सो लोकगीत केशव प्रसाद सुल्लेरी को गाओ भाओ।

0: अच्छा ई में जायद में जो मूंग आपने बही में खाद आद कौन सी उपयोग करत?
1: खाद मिला अपन ने पोटाश DAP और अब कछु नहीं मिला, फिर बाद में यूरिया डाल रहे हैं जब सब मिक्सचर बना के डाल।
0: हाँ माने पानी की संग ही दे हो?
1: हाँ मतलब जब बड़ी हो जाए सो मतलब वो सब डाल दे मिला के, यूरिया है तुम्हारी पोटाश है जिंक है ऐसी जो चीजें है सब मिला के दे दे हैं, वो जल्दी पक जाए।
0: अच्छा चूरानंद भैया किसानी के संगे पशुपालन भी बहुत जरूरी रहा थे, कछु पशु नग अपन राखो तो देखो उनसे गोबर मिलत है अपन को, गौमूत्र मिलत है, कछु उनसे अपन जैविक दवाइयां भी बना सकते हैं, तो कितने पशु धन है?
1: इतने तो मुतके हैंगी मनो हमारे घर ये कही है, अपन तो ये कही गज्जा राखे तो वही की सेवा करा दो बांध के चढ़ाते हैं छूरत नैया।
0: अच्छा तो के गोबर को कैसे का उपयोग करते हैं?
1: खाद ही बनाते हैं तो खेत पे गिरा थे
0: खाद की, बताओ तना कैसे बना गड्ढा करें कैसे?
1: कछु नहीं करें ऐसे ढेर लगो रेत, सब गर्मी में उठा के अपन ने एक तरफ धर दो दूसरे खेत में, फिर बरसात बस कार्य भर को पानी लग गया सुबह होगा पचके अच्छो रेडी कुंवर में डाल दी पूरे खेत में,
0: माने अच्छी पका तो लेते ही कहा ने। चलो चूरामन भैया हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, आप मेहनत कर रहे हो जायद में मूंग लगी है, अच्छी फसल आए बढ़िया पज आपको मिले, वो हम देख पा रहे हैं चिरइयों से पानी को भी प्रबंध आप करे हो।
1: नई चिरइया हमने, हाँ हमने पूरे खेत में हमने कही कि ये 2 घंटा चल गई पूरे में तो समझ ले खेत कवर हो जाए।
0: अच्छा पानी की बचत बताओ कितने होते से?
1: ये सब बहुत बचत होते, अकेले जो पानी भर लगे ज्यादा फिर तो तुमने पूरे खेत में 1 घंटा चला रही से पानी होगा,
0: और इसमें होत का है कि बिल्कुल बराबर जितो पानी जरूरत है फसल को तय पहुँचा थे। हाँ। अबे का इन दिनों में सही कमी रेत पानी की?
1: अब जैसा हम जब बुआ के दे रहे और हमारी ये छोटी मशीन से जो 2 लेना चला थे क्या को मतलब तो वो कवर नहीं हो रहा, हमने कही यार एक काम करो यहाँ सो कर दी, फिर बाद में अपन वही में कनेक्ट कर दी सोचे चला थे।
0: चलो बड़ी खुशी भाई चूरामन भैया आपसे चर्चा करके, बहुत ढेर शुभकामनाएं हैं आपको, मन लगा के किसानी करो, किसानी में खूब प्रगति करो, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय आकाशवाणी सागर की किसान वाणी कार्यक्रम के तहत हमारे साप्ताहिक क्रम में दो इकिलाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान वाणी कार्यक्रम में आज के अपने साप्ताहिक क्रम में हमारे किसान भैयारों से चर्चा को दौर जारी है। भैयारों आज को अपनो साप्ताहिक क्रम है आकाशवाणी गांव में, और ई में अब समय हो गयो है मनोरंजन को, मनोरंजन के लाने एक बहुत ही प्यारो सो लोक गीत सुन रहे हैं अपन, सेठ राघव दास महंत को गाओ भाओ।

0: एक और युवा किसान भैया से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। सबसे पहले तो भैया को परिचय जाने, भैया का नाम लिखा?
1: भूपेंद्र पटेल लिखते हैं, वेदांती बगीचा अम्बेडकर वार्ड से।
0: भैया हम देख पा रहे हैं आपके खेत में बड़े सिस्टमेटिक आपने किसानी कर रखी है। अच्छा भूपेंद्र भैया जी बताओ, प्लाऊ को क्या फायदा है? प्लाऊ से कौन कौन से फायदा किसानी में होते हैं?
1: प्लाऊ से अपन को जैसे अपनी जो मिट्टी ऊपर की बंजर टाइप की हो जाते हैं, तो इससे जो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और जो ऊपर को जो गेहूं को जो भूसा उसा रहे थे नीचे पहुंच जाते हैं, तो जो खाद को अपन को काम कर रहे थे,
0: खाद को काम कर रहे थे
1: जो अपन को बारिश में भैया पानी गिरे तो मैं अपन के जो जो डटुआ वगैरह है भूसा वगैरह है तो वो अपन को खाद में सब हो जाते बदल जाते हैं, तो उसे अपन को थोड़ा सा खाद की कम जरूरत पड़ा था। फिर
0: बहुत बढ़िया, माने अपनी नरवाई को बहुत अच्छे प्रबंधन हो जाते है जो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते। अच्छा भूपेन भैया आप देख रहे हुए, अभी बहुत सारे किसान भैया हरे अनावश्यक रूप से नरवाई जला देते हैं, तो जो काम आपका समझे ठीक है के गलत है? का है
1: नहीं, जो तो गलत है वैसे काहे की जो कीड़ा मकोड़ा रही थे भी जल के सब मर जाते हैं, काहे वही तो अपन के सब मिट्टी के लाने उपजाऊ कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन किसान लोग ये गलती कर रहे थे।
0: चलो हमारे भूपेंद्र भैया ने भी निवेदन करूँ है कि ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं, नरवाई जो है उसको बहुत अच्छी तरह से प्रबंधन करने हैं, नरवाई जला भी जैसे काम नहीं करने हैं। भूपेंद्र भैया हम देख पा रहे हैं आपने साग सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से लगा रखी हैं, तो बताओ कछु कौन कौन सब्जी अभी ले रखी है?
1: अपन ने अच्छी देसी ककड़ी लगाई है, उसमें क्या है लपट चल रही है अभी, तो अपन ने नेट हाउस से पूरे में पैकिंग कर दीजिए चारों तरफ से, और भट्टा लगे हैं और अपनी ग्रिल की लगी है और नेट हाउस, अपन ने एक नेट हाउस बनवा हुआ है। नेट हाउस में अपन को कहा है कि गर्मी ज्यादा पड़ा थे ना जा, तो उसमें मेन टाइम बनी रहते हैं, तो उसमें अपन की एकदम से धूप नहीं लगाता है, और अपन के जो भुंटा वगैरह लगा दी थे अपन छाया की लाने दो तरफ भुंटा लगा दी थे अपन, तो उससे छाया ही बनी रहते थे, तो एकदम लपट नहीं गलती है, टमाटर वगैरह लगी अपनी।
0: अच्छा भूपेन भैया किसानी में देसी खादों को देसी दवाइयों को भी बहुत जोर चल रहा है, प्राकृतिक खेती की भी बात चल रही है, तो आपकी है कछु ये तरफ रुचि? का करत हो कछु कर रहे?
1: हाँ अपन ज्यादातर गोबर के खाद को इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद से क्या है उससे जो पेड़ है ना वो अलग ही बनता है, और जो अपन फिर केमिकल वगैरह खाद चलाते हैं ना तो उसमें फिर पेड़ जल्दी हो जाता है और जल्दी फिर फर के खत्म हो जाता है, उसमें जे रहता है, और देसी खाद में जे रहता है अपने गोबर वाले में कि थोड़ा देर तक मतलब पेड़ भी बन जाता है अच्छा और देर तक चलता है।
0: भूपेंद्र भैया एक नुकसान और भी है, रसायनों को लगातार उपयोग करत रहे से जो है खेत की माटी की संरचना बिगड़ रही, कठोर हो रही है, जा अपन देखो अंधाधुंध खूब खाद है यूरिया डीएपी तमाम डाल रहे हैं, मानो पहले जैसा उत्पादन नहीं मिल रहा हो जैसो अपने बाप दादा ले जाते भी। भैया कम से कम मेहनत में कम से कम खर्चा में जो है बहुत अच्छी उपयोगी किसानी करते। अच्छा भूपेंद्र भैया आपने नेट हाउस की बात करी है, तो नेट हाउस में क्या ले रखो है अभी?
1: नेट हाउस में अपन की अभी ककड़ी लगी थी, तो ककड़ी अपनी अब खत्म हो गई है, उसमें अपन अब दूसरी चीज लगा रहे हैं, जैसे टमाटर है, टमाटर भी लगा सकते हैं, जैसे धनिया पत्ती है, हरे धना भी लगा सकते हैं, पालक की भाजी है वो भी लगा सकते हैं, और मतलब जो जो अपनी नॉर्मल चीज है जो अभी लगा सकते हैं अपन।
0: अच्छा भूपेंद्र भैया किसानी फायदे की तबई मानी जाते जब उनमें लगते जो है कम से कम आए और पज ज्यादा से ज्यादा हुई, तो एक इलाने देसी देसी में आपने बताया कि हम गोबर की खाद उपयोग कर रहे, कछु और भी ऐसे कारज हैं जैसे हरी खाद है, केंचुआ खाद है, जी तमाम प्रकार की चीजें हैं आजकल, तो देखो जीवामृत है, घनामृत है, जी सब चीजें अपन कृषि विशेषज्ञों से जानकारी लेके बना के और किसानी में उपयोग करें तो जैविक खेती करके अपन लगते भी कम कर सकत, तो कछु ऐसी सोच रखे आप कछु और किसानी में जैविक तरीकों को बदलाव करने की सोच रखे?
1: हाँ अपन केंचुआ को अब वर्मी वालों करो चाह रहे हैं अपन, जो नेट हाउस वालों ने अपन के लाने बताया था कि आपको मतलब एक सरकार द्वारा जो योजना दी जाएगी तो उसमें आप केंचुआ का खाद बना सकते हैं आप। हाँ तो उसमें बोल रहे थे वो, तो अब देखते हैं इस बार।
0: नहीं देखने नहीं है भैया, बिल्कुल यथाशीघ्र, और हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे रहे हैं, आकाशवाणी सागर जो उनकी साप्ताहिक क्रम के तहत अपन बते आ रहे हैं उनमें ये प्रकार की तमाम जानकारी आपको किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से मिलत रहे। अगर ऐसी कोई जानकारी जो आपको कार्यक्रम में जल्दी चाहने हैं नहीं मिल पाई है, कोई समस्या है जानकारी है, तो उखो प्रति गुरुवार किसानवाणी में हेलो किसानवाणी कार्यक्रम आते है ऊपर आप फोन लगाओ 0-75-82-40-845 नंबर डायल करके कृषि के विशेषज्ञ दोपहर में एक बजे गुरुवार को स्टूडियो में बैठत है, आपको तमाम जानकारी दे दे है। नेट हाउस है तो मैं जी केंचुआ खाद बनावे की जानकारी का ऊपर अनुदान है कैसे बने हो जी तमाम जानकारी। और किसानी में अगर कोनो आप दिक्कतें हैं जैसे मान लो आपने साग सब्जी फसलें लगाई इनमें कोई कीट है कोई रोग है तो उको समाधान भी आपको तुरंत मिले, पशुपालन में भी आपको जो कछु जानकारी चाहने तत्काल प्राप्त हुई है। हमें उम्मीद है भूपेंद्र भैया आप युवा किसान भैया हरो आकाशवाणी से जुड़ो और ऐसे फायदा भी ले हो। चलत चलत एक प्रश्न और हम आपसे पूछो चाह रहे हैं, किसानी में हम जैविक खेती की तरफ तभी बढ़ सकते हैं जब अपने पास पशुधन भी हो। कैसे जैविक दवाइयाँ ऐसी रहते हैं जो गौमूत्र से गोबर से इन तमाम चीज़ों से बनत कहानी, और किसानी और पशुपालन को तो चोली दामन को संग कहानो। माने देखो इतनी ढेर जगह डरी है अपन को, छोटी सी जगह ले लेने कहूँ भी और बढ़िया उखो पशुधन के लाने अपने चारी पानी की व्यवस्था अपनी ऐसे हो ही जाते। हाँ हाँ देख पा रहे हैं बहुत अच्छो लग रहा हो। तो हाँ पशुपालन और किसानी दो ही किसान को समृद्ध बनावे जरूरी है, तो हम ये जानो चाह रहे थे पशुपालन में कैसी का रुचि है।
1: पशुपालन में अपनी दो गैया हैं तो उन्हीं को गोबर उतरे थे और अपन मतलब और खाद वगैरह मंगा लिए थे गोबर को खाद सब लगा रहता है।
0: माने पशुपालन भी मन लगा के कर रहे भूपेंद्र भैया नहीं
1: जो देखो गोबर को खाद जो नहीं को है सब।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: गड्ढा खोदे हैं उसमें कचड़ा वगैरह और जी एक गड्ढा खोदे हैं अपन एक तो उसी में क्या है गैया अपनी गैया है दो गैया है तो उसका गोबर वगैरह और उस बछड़े अछड़े है तो बहुत सारा गोबर हो जाता है तो उसी में पटकते रहते पत्ती वगैरह है वो हरी हरी पत्ती है जो सब कचड़ा चला है जो सब उसी में डाल देते तो गोबर के साथ है वो भी अपना खाद बन जाता है। हाँ पक जाता है जी वो रड़ली है इसमें खाद भरा है इसमें साल भर हो जाती है तो अच्छा पक जाता है वो खाद तो वही खाद अपन यूज में ले लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया हमारी ढेर शुभकामनाएं हैं भूपेंद्र भैया, ऐसा ही मन लगा के किसानी करो जैविक तौर तरीकों को भी अपनाओ, फल साग सब्जी पशुपालन सब कछु मन लगा के करते रहो, खूब प्रगति करो, आकाशवाणी सागर से भी जुड़ी रहो। आज के साप्ताहिक क्रम में आपने हमें अपनो बहुत ही बहुमूल्य समय दो इकलाने हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भैया आज सागरई में बागराज कनेरा के किसान भैया हरों से किसानी पशुपालन बागवानी की जो चर्चा भई हम सब के लाने एक प्रेरणा स्रोत को कारज कर है, हम सब आपस में किसानी के जो अनुभव बांटत हैं उनको मुख्य उद्देश्य ही जो रहा है कि हम एक दूसरे से किसानी में जो नवाचार जो नए प्रयोग कर रहे हैं उनसे कछु सीख ले बें, एक दूसरे से कछु नई सीख ले बें, वो किसानी में वो सीख हो अमल में ले आए तो निश्चित रूप से किसानी लाभ को धंधो बने। आज के अपने साप्ताहिक क्रम में हमारे किसान भैयाओं ने हमें अपना बहुत ही बहुमूल्य समय दो सो सभी जनों को एक बार फिर कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद और कह रहे हैं जय हिंद।

0: तो देखो नीरज भैया, आकाशवाणी गांव में कार्यक्रम के तहत अपन ने कन्हैया देव और बाघराज के जो किसान भैया हैं, प्रगतिशील किसान कैसे लाभ ले रहे हैं, कैसे किसानी कर रहे हैं, का उनको समस्याएं आ रही हैं, ये सब की जानकारी उनके द्वारा सभी किसान भैयारों को प्राप्त भई।
1: बिल्कुल, और किसान भैयारों, चलत चलत आगामी बोनी और उनकी तैयारी से जुड़ी बहुत छोटी सी चर्चा हम आपसे बांट रहे हैं। किसान भैयारों, मौसम विभाग लगातार जानकारी दे रहा है कि आसों मानसून जो है समय से थोड़ी पहले आ सकते हैं, तो जो समय ऐसा है कि अपन को अपनी आगामी बोनी की तैयारी जो है वो इस समय कर लो चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: खास तौर पे बीज और जो खाद और उर्वरक वगैरह जो शुरुआत में अपन को आवश्यक रहे उनको अपन को अभी से जो है तैयार रखो चाहिए, ताकि समय पे अपन बोनी करें तो बहुत लाभ मिलत है। कैसे देखो राम कुमारी बिन्ना, जब जो खरीफ फसल रहा थे वो मानसून आबे पे तय होते है कि हमें बोनी कब करो चाहिए, खासतौर पे दो तीन पानी जब गिर जाते हैं, बतर आ जाते हैं, तब अपन बोनी करते हैं। तो इसमें पहल से अगर अपन अपनी पुख्ता तैयारी रखें तो निश्चित रूप से हमें लाभ भी जो है पूरा पूरा मिलत कहानू।
0: बिल्कुल भैया, तैयारी वैसे भी हर ही चीज की पूर्व में करो चाहिए, पहले से करी भाई तैयारी जो योजनाबद्ध तरीके से करी जाए तो उसमें लाभ की संभावना रहते है, नुकसान की कोनो जगह बचत नहीं है।
1: हाँ, तो अब बिना अपन जानकारी के क्रम पे पहुंच जाए तो झट्टे जो है हमारे किसान भैयारों को हम दाएं दी थे मंडी में आज की नाजों के प्रमुख भाव। किसान भैयारों, गेहूं 2200 रुपया से 2650 रुपया प्रति क्विंटल भाव रहो, चना 4000 रुपया से 4500 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 6700 रुपया से 8000 रुपया प्रति क्विंटल, मूंग 6400 रुपया से 6600 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का 1600 से 1650 रुपया प्रति क्विंटल की भाव रही, और बटरी को भाव रहो 3300 रुपया से 4000 रुपया प्रति क्विंटल।
0: बिल्कुल भैया, और अगर मौसम की अपन बात करें तो देख रहे हैं कि मौसम में गर्माहट है, सो अधिकतम तापमान रहो 43.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 27.8 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता की बात करें तो सुबेरे की 56% और संजा की 43% रही है।
1: बिल्कुल किसान भैयारो, और अब आज को किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, मगर उनके पहल के हैं कि भैयारो बीजा गर्मी पड़ रही है, सो अपनों ख्याल रखो, अपने बाल बच्चों को ख्याल रखो, अपने जो पालतू पशु हैं, दुधारू पशु हैं, उनको ख्याल रखो, आकाशवाणी सागर से लगातार जुड़े रहो।
0: बिल्कुल भैया, और एक के संगे कार्यक्रम किसान वाणी से हम राम कुमारी बहन को
1: और नीरज सोनी खुंदियो आज्ञा
2: राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अरे सुन तो,
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो, जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है।
4: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ,
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
2: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

के और शिल्पा राव की आवाज़ों में अनविता दत्त गुप्ता का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। संगीत विशाल शेखर का था, फिल्म का नाम था बचना ए हसीनो। आइए अब सुनते हैं आ जा नचले। इस फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में जयदीप साहनी का लिखा ये गीत। संगीत है सलीम सुलेमान का।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आ जा नचले फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चित्रपट संगीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं आशिकी 2 फिल्म का गीत, पलक मुछाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। गीत इरशाद कामिल का है, संगीत जीत गांगुली का।

पलक मुछाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में आशिकी 2 फिल्म के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में पेश हैं कुछ चुनिंदा गजलें।

0: अरुणा कुंदनानी की आवाज में, तबिश दहलवी की लिखी गजल अभी आप सुन रहे थे। संगीत था आलोकनाथ डे का।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मिर्जा गालिब की लिखी ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

संगीत सरिता कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल।

मिर्ज़ा गालिब की लिखी गज़ल भी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में। इस गज़ल के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

0: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भेंट वार्ता, विषय है विश्व डेंगू दिवस। विशेषज्ञ हैं MD मेडिसिन BMC सागर डॉक्टर अमित सक्सेना।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद, और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं डेंगू बुखार के बारे में। एक वायरल बीमारी है जो मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलती है, और कई बार ये बीमारी गंभीर रूप भी धारण कर लेती है। तो इसके बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है, और इसके बारे में प्रकाश डालने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में। हमारे अमित सक्सेना साहब, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले, सबसे बुनियादी सवाल जो है, डेंगू बुखार आखिर बाकी बुखारों की तुलना में डेंगू बुखार कैसे अलग है, या डेंगू बुखार क्या है?
2: डेंगू बुखार, जैसे कि आपने बताया, वो मादा मच्छर है जिसको वेराइटी होती है उसकी एडीज, उसके काटने से होता है। ये जो बीमारी होती है, इसमें जो लक्षण होते हैं, जैसे कि तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, ये सब रहता है। लेकिन उसके कुछ कैरेक्टर जो रहते हैं, उसको अलग दूसरी बीमारी से अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।

0: हैं, जैसे कि मलेरिया हुआ या टाइफाइड हुआ, इनमें भी ये सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन सिर्फ अपन उसको लक्षणों के हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें लैब टेस्ट, खून की जांच, उससे भी अपन को देखना पड़ेगा कि ये चीजें आपस में कैसे अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं।
1: यानी कि एक ही लक्षण कई तरह की बीमारियों में हो सकते हैं, कई तरह के बुखार में हो सकते हैं। डेंगू के बुखार को निश्चित करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आपको कुछ जांचें करानी होती हैं। यदि हम जांचों की बात करें तो कौन कौन सी वो जांचें होती हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं, बिल्कुल शर्तिया कह सकते हैं कि आपको डेंगू बुखार है, और क्या प्लेटलेट्स कम होना ही एकमात्र संकेतक है, सूचक है, इंडिकेटर है डेंगू बुखार का? क्योंकि लोगों का प्लेटलेट कम होता है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि उनको कहीं डेंगू तो नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
0: बिल्कुल, एक सिर्फ प्लेटलेट कम होना ही इसमें एक मार्कर नहीं होता है डेंगू की सीवीटी बताने के लिए। जैसे अपन को बताना है कि ये सिर्फ डेंगू ही बीमारी है या कुछ और है, तो उसके टेस्ट के लिए जो स्पेसिफिक रहेगा वो रहेगा आपका डेंगू एंटीजन टेस्ट। जो डेंगू जो रहती है वैरायटीज के सीरोटाइप रहते हैं, चार रहते हैं, 1, 2, 3, 4। तो उसमें एंटीजन में अपन देखते हैं 1, 2, 3, 4 में कौन सा पॉजिटिव है। इसके बाद अपन इसकी एंटीबॉडी देखते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले अगर जो डेवलप होगा वो होगा IgM, उसके बाद डेवलप होगा IgG, इसके बाद अपन देख सकते हैं CBC, और उसमें अपन देख सकते हैं प्लेटलेट जैसा कि आपने बताया, और दूसरी चीज अपन देखते हैं WBC। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि प्लेटलेट हमेशा कम हो तभी अपन उसको डेंगू मानेंगे। स्पेसिफिक टेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका एंटीजन टेस्ट। प्लेटलेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट टेस्ट होता है, उससे अपन को यह पता चलता है कि आपका खून जो है वो गाढ़ा कितना है। अगर खून आपका गाढ़ा ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपका जो पानी है उसका लॉस हो रहा है, वो आपकी छोटी धमनियों से बाहर जा रहा है और शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, और ये जो चीज होती है वो भी डेंगू की सीवीटी को बढ़ाता है।
1: जी, पानी की कमी होती है, इसीलिए मरीज को बार बार ये कहा जाता है कि अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करें, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होते हैं इसमें निश्चित रूप से। डॉक्टर साहब, एक चीज ये समझना चाहेंगे कि क्या सारे जो मादा एडीज मच्छर हैं उनके काटने से डेंगू होता है, या फिर जो उससे संक्रमित होते हैं उनके काटने से ही होता है, और ये मच्छर कब काटते हैं, कहां पनपते हैं?
0: सिर्फ जो मादा संक्रमित होती है उससे ही डेंगू फैलेगा, या फिर अगर जो नॉर्मल मादा है उसने संक्रमित व्यक्ति को काटा है फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति को काट रहा है तो भी डेंगू हो सकता है। और ये जो मच्छर होते हैं वो मोस्टली आपके डाउन एंड डस्क, यानी कि जब सूरज उगता है या तो सूरज जब ढलता है तब ये मच्छर मोस्टली काटते हैं, इसलिए हमें उस समय ही सबसे ज्यादा बचाव रखना है। हो सके तो मतलब अपन बाहर नहीं जाएं, कपड़े फुल पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करें।
1: बहुत अच्छे उपाय बताएं, और आपने ये बताया कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ये मच्छर काटता है।
0: एक बात और है, जो मलेरिया के मच्छर रहते हैं वो मोस्टली सुबह काटते हैं, और जो डेंगू के मच्छर होते हैं उसमें जो लास्ट में जो रहता है उसमें व्हाइट और ब्लैक, मतलब सफेद और काले स्ट्रिप्स टाइप के रहते हैं, उससे अपन उनको दूसरे मच्छरों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसका मतलब जिन क्षेत्रों में आपका डेंगू बुखार फैला हुआ है, डेंगू बीमारी फैली हुई है, उस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा चौकन्ना या सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां उनको मच्छर काट रहा है, मच्छर काट के आपको भी काट सकता है, तो आपके अंदर संक्रमण हो सकता है।
0: अगर एक परिवार में एक संक्रमित व्यक्ति है तो उसको बिल्कुल अपन को उसको बचाना है, फिर से उसको नहा काटे मच्छर, क्योंकि अगर वो उस व्यक्ति को काटेगा और जो परिवार के दूसरे लोग हैं उसमें भी ये बीमारी जाने का खतरा रहेगा।
1: अब बात करें कि किन लोगों में ज्यादा रिस्क होता है, जोखिम होता है। फर्ज कीजिए कि किसी को मच्छर ने काटा, संक्रमित मच्छर ने काटा, और किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी काटा, लेकिन पहले व्यक्ति को हो गया, दूसरे व्यक्ति को नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है?
0: जी,
1: और क्या कारण उसके लिए जिम्मेदार है?
0: जी, बिल्कुल। जनरली जो देखते हैं अपन, जो ओल्ड एज है या तो उनको पहले से कुछ बीमारी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर इनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या जो बच्चे हैं, इन्फेंट है, एक साल से कम है, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है, महिलाएं हैं जो गर्भवती है, ये सब हाई रिस्क में कहलाते हैं। इनमें जो डेंगू होगा वो उनमें सीवियरिटी के ज्यादा चांसेस है, ना कि एक नॉर्मल पर्सन में। तो जब भी ऐसे व्यक्ति को डेंगू हो रहा है तो उनको बिल्कुल अपन को मॉनिटरिंग करना है कि कहीं ये ज्यादा सीवियर ना हो जाए। मोस्टली यही रहता है कि जब मच्छर अगर डेंगू वाला काटा है व्यक्ति को, वो मोस्टली 4-7 दिन में जैसे भी नॉर्मल वायरल फीवर होता है तो वैसे ही ये भी चला जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्लेटलेट कम हो रहा है या हेमेटोक्रिट बढ़ रहा है या कुछ सीवियरिटी हो रहा है, तो वो चांसेस हैं। वो फिर जेनेटिक मेकअप आपका कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो डेंगू होते हैं उसके 4 टाइप होते हैं, अगर एक व्यक्ति को एक बार उस टाइप से डेंगू हो गया है तो फिर से नहीं होगा उससे, लेकिन बाकी 3 बचे हैं, और अगर उस पेशेंट को फिर से डेंगू के पेशेंट ने काट लिया तो चांसेस ये ज्यादा है
1: मच्छर ने काट लिया,
0: डेंगू के मच्छर ने काट लिया, लेकिन एक टाइप का मतलब उसको इम्यूनिटी हो गई, लेकिन जो दूसरा सीरो टाइप है, एक से तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो गई, अब 1, 2, 3, 4 जो टाइप थे एक से इम्यूनिटी होगी, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ फोर्थ जो रहेगा उससे सीवीटी के ज्यादा चांसेस है।
1: बचे हुए तीन से के लिए आपको इम्यूनिटी नहीं है,
0: नहीं
1: केवल एंटीबॉडीज फर्स्ट

0: के लिए, पहले के लिए पैदा हुआ है।
1: अगर फिर से उसको डेंगू हो गया तो सीवियरिटी मतलब सीवियर होने के ज्यादा चांसेस हैं पेशेंट को, क्योंकि उसमें फिर रिएक्शन होता है, जो एंटीबॉडी बनी है वो आपके शरीर के अगेंस्ट काम करेगी और डेंगू ज्यादा सीवियर हो जाएगा।
0: बहुत ध्यान देने वाली बात है डॉक्टर साहब की, यदि आपको एक बार डेंगू हो गया है और दूसरी बार डेंगू होता है तो ज्यादा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल यही था कि अगर आप डेंगू बुखार से संक्रमित हो गए हैं या उसके चपेट में आ गए हैं, वायरस से संक्रमित हो गए हैं, तो कितने दिन का ये पूरा विंडो होता है, कितने समय तक वो बुखार स्थायी रूप से मरीज पे रहता है?
1: मोस्टली 4 से 10 दिन तक रहता है, फीवर रहेगा, उसके बाद फिर लाल धब्बे आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि कई बार बुखार आने के बाद पेशेंट को लगता है कि वो ठीक है, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद भी कंडीशन खराब हो सकती है, उसको लाल धब्बे आ सकते हैं, जो हिमेटोक्रिट जो बताया मतलब खून गाढ़ा हो सकता है, एसिडिटी आ सकती है। तो सिर्फ अपन को प्लेटलेट ही उसमें नहीं देखना है, बाद में जैसे आपका फीवर सबसाइड हो गया तब भी आप देखें कि आपके प्लेटलेट नॉर्मल हुए कि नहीं, हिमेटोक्रिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है।
0: इसके लक्षणों की यदि हम थोड़ी सी और डिटेल में अगर हम तफसील में जाकर के जांच करें या जानने की कोशिश करें, तो कैसे कैसे मैनिफेस्ट होते हैं इसके लक्षण, कैसे कैसे प्रकट होते हैं? जैसे हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहते हैं, तो जोड़ों में दर्द की बात कर लें, या आंखों के नीचे जलन की बात कर लें, या फिर चकत्ते पड़ने की बात, रेड रैशेज जिसे बोलते हैं, ये कैसे किस क्रम में ये प्रकट होते हैं आपकी बॉडी में?
1: सबसे पहले आपको बुखार आएगा जो बहुत तेज हो सकता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी हो सकता है। सिर दर्द जो होता है वो बहुत ज्यादा तेज रहता है, बदन दर्द होता है, जैसे आपने बताया इसको ब्रेकबोन फीवर, ऐसा लगता है किसी ने हड्डी तोड़ दी है। और इसका एक प्रिक्यूल रहता है कि जो आंख के पीछे आपको जलन या तो दर्द होता है, और ये सिम्टम्स आने के बाद फिर लाल धब्बे आते हैं, और उसके बाद फिर आपका पेशेंट अगर नॉर्मल हो रहा है, ट्रीटमेंट से ठीक होगा, या तो फिर वो सीवियरिटी हो जाएगा। सीवियरिटी से आपका ये होगा कि उसका जो प्लेटलेट है वो बहुत कम हो जाएंगे, अगर ये 20,000 से भी कम हो जा रहे हैं तो इसमें बहुत चांसेस है ब्लीडिंग होने का, मतलब कि आपके नाक से, उल्टी से या लैट्रिन से खून आ सकता है। हेमेटोक्रिट कम होगा इसमें, मतलब जो छोटी धमनियां रहेगी उससे जो आपका पानी रहेगा वो बाहर रसेगा, और ये जो पानी है वो आपका पेट में भी भर सकता है या तो फिर आपका फेफड़ों में भर सकता है, उसके बाद पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। और ऐसे केसों में जो आपका लिवर होता है उसमें भी कंजेशन होता है, हेपेटाइटिस होता है, तो वो चीज भी आप LFT में देखेंगे, वो चीज बढ़ी हुई आएगी, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, बार बार उल्टी होगी, और सीवीटी में उसमें खून भी आ सकता है, पेट भारीपन लगेगा, उसको असहजता सी लगेगी, BP कम होगा क्योंकि आपका खून का रिसाव है, तो उसको चक्कर आएंगे और उसको बार बार ऐसा लगेगा कि वो बेहोश होने वाला है। अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करवाना है, घर पे रह के इसका इलाज नहीं करना है।
0: डॉक्टर साहब, डेंगू का नाम आते ही बहुत से लोग कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परिवार में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि लोगों को हो सकता है कि बहुत ज्यादा इसके बारे में उस रूप में जानकारी ना हो। लेकिन यहां पर ये आप बताइए हमारे श्रोताओं को, मरीजों को, कि किन स्थिति में आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, यानी संस्थागत इलाज की जरूरत है, और किन परिस्थितियों में आप घर में ही सही हो जाते हैं, क्योंकि सुना है कि 90% तक पेशेंट जो होते हैं, मरीज होते हैं, वो घर में ही सही हो जाते हैं, तो इसमें क्या एहतियात बरतनी पड़ती है और किन मरीजों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है?
1: बिल्कुल, नॉर्मली जो पेशेंट है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसमें अपन को पैरासिटामोल लेना है दर्द के लिए, और पानी, इलेक्ट्रोलाइट ये अपन को लेना है। अब कुछ पेशेंट में वार्निंग सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसे लक्षण हैं, अगर वो आपको आ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना ही है, उसमें तेज सिर दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उल्टी बार बार हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है या पेट में भारीपन लग रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, या तो मूर्छा जैसा लग रहा है कि आप बेहोश हो जाएंगे, और लाल धब्बे आ रहे हैं, या तो फिर कहीं से आपका खून का रिसाव हो रहा है, नाक से, मुंह से, लैट्रिन से या पेशाब से, ऐसे लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो जल्द से जल्द आपको अस्पताल में जाके डॉक्टर से इलाज करवाना है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने दवाइयों में पैरासिटामोल की बात की, इस मर्ज में या इस बुखार में कौन सी दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयां भी लोग लेने लगते हैं, पेन किलर्स भी, दर्द निवारक दवाइयां भी लेने लगते हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन सी दवाइयां नहीं लेनी चाहिए।
1: इसमें आपको पेन किलर जो है एनसेड है, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, या तो एस्पिरिन है, या तो स्टेरॉयड है, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये जो रहेंगे वो आपके प्लेटलेट के फंक्शन को अफेक्ट करेंगे, उससे ब्लीडिंग के या रक्त के स्राव के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये आपको नहीं लेना है। और इसमें एंटीबायोटिक का एज सच साइंटिफिक कोई रोल नहीं है, जो मेन ट्रीटमेंट है वो आपका हाइड्रेशन है, फ्लूइड है, और आपका दर्द हो रहा है या बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल है। इसमें एक लोकल चीजें भी रहती हैं, आपकी बोलते हैं कि पपीते के पत्ते खाने का जो रहता है, तो इसमें इसका भी रोल कुछ है नहीं, मतलब कहीं भी साइंटिफिक प्रूफन नहीं है। और आप अगर पपीते के पत्ते खा रहे हैं तो उससे ये चांसेस हो सकता है कि आपको गैस्ट्राइटिस हो, उल्टी बढ़ जाए, और उल्टी होने से डिहाइड्रेशन और बढ़ जाएगा, जो स्थिति को और बिगाड़ सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, घरेलू नुस्खे की तरफ ही मैं आ रहा था और आपने उसका जिक्र दिया, तो पपीते की पत्ती की बात तो हो गई।

0: बकरी का दूध भी लोग पीते हैं, नारियल पानी भी पीते हैं, तो इसका क्या रोल है?
1: इसमें आपका नारियल पानी या जो भी तलब पदार्थ है, लिक्विड डाइट है, मतलब कि आप कोई से भी फल खा सकते हैं, पपीता भी खा सकते हैं, पत्नी पपीता खा सकते हैं, कीवी है या जो भी फल है वो आप खा सकते हैं। बकरी के दूध का ऐसा कुछ मतलब इसमें नहीं है। जो आपको नॉर्मल जो दूध है चाहे गाय का है, जितना न्यूट्रिशन वो देगा वो ये न्यूट्रिशन देगा, बाकी इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है डेंगू में।
0: खाने में कुछ विशेष एहतियात या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: जी, इसमें वही आपको पानी ज्यादा पीना है और तली चीजें आपको अवॉइड करना है, मसाले की ये सब चीजें आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस समय आपका लिवर भी स्ट्रेस में है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, फल खाना है और आपको लाइट खाना खाना है, उबला खाना खाना है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा आपसे हुई। बस आखिरी में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि डेंगू के मरीज के लिए आप कुछ सुझाव दीजिए, कुछ परामर्श ऐसा दीजिए जिससे वो सावधानी बरत करके उससे बच सकें।
1: सबसे पहले तो अगर आपको डेंगू हो गया है तो आप घबराए नहीं, ये जो बीमारी है सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे कोई भी वायरल फीवर होता है 4 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बताया आपको कि लक्षण अगर आपके बिगड़ रहे हैं तो जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल जाना है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि आपको प्रिवेंट करना है इस बीमारी ये ना हो, क्योंकि ये मच्छरों से होती है। तो आप घर में साफ सफाई रखें, अगर टायर हैं या तो कुछ गमला है उसमें जो साफ पानी है,
0: कूलर्स
1: जो है। कूलर्स हैं, क्योंकि ये जो मच्छर है वो साफ पानी में अंडे देता है और प्रजनन वहां होता है और इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो आपको घर में ये साफ सफाई ही रखना है कि कहीं भी अगर जमा पानी है तो उसको बहा दें और ऐसा ना हो कि वहां फिर से मच्छरों का प्रजनन हो। और नुस्खे है जैसे कि आपको मॉस्किटो रिपेलेंट लेना है, नेट लगाना है, घर पे अगर खिड़कियां हैं तो उसमें जाला लगाना है, टूट गया है तो उसको ठीक करना है जाली को।
0: जी, मूलतः बात यह है कि आपको मच्छरों से बचाव करना है और मच्छर ना पनपने पाए। आपने बताया कि साफ पानी जो होता है उसका मुख्य स्रोत होता है, वहां से मच्छर पनपते हैं, और ये बात ध्यान रखने की है। और जो उपाय आपने डॉक्टर साहब बताया कि आपको कैसे रहना है उसको अपना करके आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। ये जरूर एक खतरनाक बीमारी है लेकिन इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जो नुस्खे आपने बताए उसको अपना करके। डॉक्टर अमित सक्सेना साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से हमारे बीच आ पाए और आपने डेंगू बुखार के ऊपर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
2: विश्व डेंगू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। विशेषज्ञ थे डॉक्टर अमित सक्सेना, MD मेडिसिन विभाग BMC सागर। इनसे बातचीत कर रहे थे दीपक निषाद। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या का आज का अंक दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा थोड़ी ही देर में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
4: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां

0: नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय

0: राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। FM बैंड 102.6 MHz पर रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मनोज सोनी का प्यार भरा नमस्कार।

जीने की राह फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई थी आप सभी की। ग्राम दुल्हापुर, ज़िला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलवान, इरफान इसरार और नरगिस खातून। सनावद, ज़िला खरगोन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाई, राजकुमार बोराना और उनका परिवार। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। इस गीत की फरमाइश रहली मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई थी। सुनना चाहते थे हेमराज ठाकुर, राकेश श्रीवास्तव, नवल राघवेंद्र, नरेंद्र सोनी, जीतू नामदेव, छोटू नामदेव, उमा सराफ, राम जैन और उनका पूरा परिवार। कांकेर संबलपुर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मनचाहे गीतों के कार्यक्रम में अगली गीत की फरमाइश हमसे की है आप सभी ने। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर। श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका जीविका, सानू और अर्चना कुंभार।

0: यहीं से अशोक तले, सविता तले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका तले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवने, इस गीत की फरमाइश प्राप्त हुई अमावनी से। सुनना चाहते हैं गुड्डू तिवारी, पूजा तिवारी, नारायण प्रसाद तिवारी, योगिता वैष्णवी और उनका परिवार। बटेंडर रोड मडीन डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया और उनका पूरा परिवार। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, साइना और निवान शर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं पतंगा फिल्म का गीत शमशाद बेगम की आवाज में। गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत है सी रामचंद्र का।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ों में पतंगा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा ये गाना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है अंधा कानून। इस गीत की फरमाइश हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई आप सभी की। नेहरू चौक पैठण से सुनना चाहते हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल जाधव और बेबी सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा। किशनगंज बिहार से सुनना चाहते हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया और अनुराग मोहन। आप सबकी फरमाइश पर अंधा कानून फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

मनचाही गीत कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई आप सभी की। सनावद मध्य प्रदेश से सुनना चाहते हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शाताब और उनका परिवार, यहीं से बेगम सलमा, सुमैया, आयशा, सादिया, नवासी, ज़िक्रा और मोहम्मद सकट खत्री। ग्राम पाहरा, ज़िला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं पोषण बंछोर, चंद्रकिशन, प्रीति और छाया बंछोर। ग्राम पोस्ट अगरिया से संजय प्रजापति, सुनील, सुरेश, उषा, रिक्की, विशाखा और उनका परिवार। इसी गीत की फरमाइश मलोट पंजाब से प्राप्त हुई सतीश मेघलानी, अनमोल मेघलानी, विवियन और उनके बहुत सारे साथियों से ये फरमाइश प्राप्त हुई मलोट पंजाब से। आप सभी सुनना चाहते हैं जंजीर फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत गुलशन बावरा का है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

मनचाहे गीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं बॉबी फिल्म का गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गीतानंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई आप सभी की। उमरखेड़ महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं अभिजीत गफवानकर, सरिता सिद्धांत और एकांश गफवानकर, यहीं से प्रिंस और उनका परिवार। नागपुर से वैशाली शैलेश गफवानकर, श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनि गफवानकर। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी पोटके, नंदा हनुमान और उत्तम जगदाटे। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया। भिलाई से वाजिद अली, रुखसाना और अनायजा। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मॉरस अनिल, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल। ग्राम सुखरी कला धमधा से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल।

शैलेंद्र सिंह की आवाज में बॉबी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के साथ ही मनचाहे गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ।

दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का। लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

ऋषि कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल घुट्टी में

इसी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक

उबाल आया। उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं। उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना। इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: फिर है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मैं।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।

0: ये फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की महफिल सजेगी, हम साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, मेरी बातों के संग महसूस करेंगे प्यार का एहसास। रेशमी चुनर से ढका तेरा चांद सा चेहरा, न जाने कब से तेरे दीदार की ख्वाहिश लिए बैठा हूँ। काश हवाओं का एक झोंका एक पल को चुनर हटा दे, तो जरा मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए।

अंतराल के बाद छाया गीत का सफर आपके संग सभी का स्वागत है। तुम्हारा साथ गर जरा सा मिल जाता तो तमाम शामें हसीन हो जाती, न कटती रातें तन्हाइयों में, चांद को यूं निहारते हुए बातों ही बातों में गुजर जाता वक्त और रात का मदहोश आलम।

की उल्फत में जरा सी शोकियां हैं, नादानियां हैं, कुछ शिकवे हैं, कुछ शिकायतें भी हैं, मगर जरा मेरे दिल की मजबूरियां देखिए, ये मोहब्बत भी उन्हीं से बार बार करता है।

0: हटा दो।
1: एक हसीन मुलाकात के लिए जरा पैगाम भेज दूं, उम्मीद है बहुत तेरे आने की। यूं मेरे खत को किताबों में न रख देना, जरा उसमें लिखे जज्बातों को दिल से महसूस कर लेना। यकीनन लबों पे मुस्कुराहट तैर जाएगी और मुझे भी दिल में जगह मिल जाएगी।

0: मैं बिल्कुल समझाओ ना।
1: मचल उठा ये

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई।

0: और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द वॉर्म्थ एंड एंथुसियाज्म ऑफ द गैदर